103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 3 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली

FM 103 MHz पर हम आकाश वाणी की डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आइए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजे आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजे को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल

0: और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारे दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। बटेर पालन आय का साधन, आलेख और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे।
1: आलेख और वाचन स्वर है सुनीता अग्रवाल का।
2: बढ़वा तेजी से होती है और मुनाफा भी अधिक होता है, तो आइए जानें विस्तार से कि बटेर पालन से न केवल अच्छी कमाई की जा सकती है बल्कि बटेर की घटती संख्या को भी रोकने में मदद की जा सकती है। हमारे देश में व्यावसायिक मुर्गी एवं बत्तख पालन के बाद बटेर पालन का व्यवसाय तीसरे स्थान पर आता है। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं और उनमें से अधिकांश भारत की जलवायु में पाली जाती हैं। इन नस्लों में कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडे उत्पादन के लिए किए जाते हैं। किसान अपने उत्पादन उद्देश्य के अनुसार ही किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं, जैसे वोल वाइट या मांस उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, या अमेरिकी नस्ल की बटेर है। वैसे ही है वाइट वेस्टेड या भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है, जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। और अधिक अंडे देने वाली नस्लें हैं ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश वाइट, मंचूरियन, गोल्डन फिरॉन एवं टक्सेडो इत्यादि। बटेर पालन में आवास की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि किसान व्यवसायिक बटेर पालन करना चाहते हैं तो आवास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आवास में बिछावन प्रणाली और पिंजरा विधि से बटेर पालन किया जा सकता है। इसमें पिंजरा विधि का उपयोग अधिक होता है और अधिक लाभ और सुविधाजनक भी होता है। 2 सप्ताह की आयु के बाद पक्षियों को पिंजरे में रखा जा सकता है। 3×2.5×1.5 वर्ग फीट आकार वाले पिंजरे में इन्हें रखना उचित रहता है। व्यवसायिक अंडों के लिए कई पिंजरे रखे जाते हैं और प्रत्येक पिंजरे में 10 से 12 अंडे देने वाले बटेर को रखा जा सकता है।

0: है। आवास के अंदर ताजी हवा और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चूजा आवास में खिड़कियाँ और रोशनदार का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि एक समान रोशनी और हवा चूजों को मिलती रहे। बटेर के चूजों को पहले 2 सप्ताह तक 29 घंटे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, और गर्मी पहुंचाने के लिए बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। एक दिन के चूजे के लिए बिजली ब्रूडर का तापमान पहले सप्ताह में 950 फ़ारेनहाइट से बढ़कर 50 फ़ारेनहाइट प्रति सप्ताह कम करते रहना चाहिए। बटेर पालन में आहार व्यवस्था का होना भी ज़रूरी होता है। 1 किलो बटेर का उत्पादन करने के लिए 2 से 2.5 किलो आहार की ज़रूरत होती है, ताकि अच्छे शारीरिक विकास व स्वास्थ्य से उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला संतुलित आहार खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक व्यावसायिक बटेर को प्रतिदिन 20 से 35 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है, और एक नवजात शिशु बटेर के राशन में लगभग 27% प्रोटीन तथा वयस्क के लिए 22 से 24% प्रोटीन का होना जरूरी है। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे देती है, और मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है और वसा की मात्रा भी कम होती है। अन्य पशुपालन के साथ साथ बटेर पालन एक व्यवसाय करना और इसे आगे की बढ़ाया जा सकता है। बटेर जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में ही अंडे देना शुरू कर देती है, तथा बटेर बाजार में 6 से 5 सप्ताह बाद ही बेचने के लायक हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे पक्षियों की तुलना में बटेर रोगों के प्रति बहुत ही प्रतिरोधी हैं, इसीलिए बटेर में टीकाकरण की आवश्यकता नहीं या कम होती है। बटेर के अधिक उत्पादन एवं रोगों से बचाने के लिए अच्छी देखभाल, अच्छे आवास एवं संतुलित आहार की ज़रूरत पड़ती है। नियमित आहार में विटामिन एवं खनिज लवण का होना भी ज़रूरी होता है, और इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर बटेर पालन की जाए तो निश्चित ही अधिक मुनाफा पाया जा सकता है। और आज की जानकारी यहीं तक।
1: बटेर पालन पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे सुनीता अग्रवाल से, और अब समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस कांड का।
2: एपिसोड नंबर 143।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया। अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते, तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

पराधीन सपने हो सुख नहीं। तुलसीदास जी का कहना है कि जो व्यक्ति स्वाधीन नहीं होता है उसे स्वजनों से कभी भी सुख नहीं मिलता है। हमें जीवन में स्वाधीन होना चाहिए। एक मनुष्य के लिए पराधीनता अभिशाप की तरह होता है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं वे सपने में भी कभी सुखों का एहसास नहीं कर सकते हैं। जब व्यक्ति के पास सभी भोग विलासों और भौतिक सुखों के होने के बाद भी अगर वह स्वतंत्र नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए यह सब व्यर्थ होता है। पराधीनता एक मनुष्य के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। इस संसार में पराधीनता को पाप माना गया है और स्वाधीनता को पुण्य माना गया है। पराधीन व्यक्ति किसी मृत की तरह होते हैं। पराधीनता के लिए कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे स्वयं तो अक्षम होते ही हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं। भगवान केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। पराधीन सपने हो सुख नाही, इस उक्ति का अर्थ होता है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता। सुख पराधीन और परावलंबी लोगों के लिए बना ही नहीं है। पराधीन एक तरह का अभिशाप होता है। मनुष्य

0: मनुष्य तो बहुत ही दूर है, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। पराधीन व्यक्ति के साथ हमेशा शोषण किया जाता है। पराधीनता की कहानी किसी भी देश, जाति या व्यक्ति की हो, वह दुख की कहानी होती है। पराधीन व्यक्ति का स्वामी जैसा व्यवहार चाहे वैसा व्यवहार उसके साथ कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह कभी भी किसी के वश में या किसी के अधीन रहने को तैयार नहीं होता। एक स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उन स्वतंत्रता सेनानी का नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर कभी उसे पराधीन होना भी पड़ता है तो वो स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य, सभी को पराधीनता के कष्टों का पता होता है। जैसे एक पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसी तरह सोने के पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। सोने के पिंजरे में रहकर उसे व्यंजन पदार्थ अच्छे नहीं लगते, वह तो स्वतंत्र रूप से पेड़ पर बैठकर फल फूल खाने से सुख का अनुभव करता है। उसे स्वतंत्रता में कड़वी निबोरी भी मीठी लगती है। पक्षी को सोने के पिंजरे में खाने को तो सारी सामग्री मिलती है, लेकिन वह स्वतंत्र होकर उड़ नहीं पाता है। मनुष्य की यह विडंबना होती है कि वह अपने ही कृत्यों के कारण पराधीनता के चक्र में फंस जाता है। अगर मनुष्य को स्वाधीनता को पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटता है, और ना ही उसे पीछे हटना चाहिए। पराधीनता के समान अभिशाप कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पराधीनता एक व्यक्ति की हो सकती है, एक परिवार की हो सकती है या फिर देश की हो सकती है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी कभी भी कहीं भी अपमान कर सकता है। प्रकृति का कण कण स्वतंत्र होता है। प्रकृति को अपनी स्वतंत्रता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। जब जब मनुष्य प्रकृति के स्वतंत्र स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसे अच्छी सजा देती है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका परिणाम प्रदूषण, भूकंप, भूक्षरण, बाढ़ें, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है। जब हम दो फूलों की तुलना करते हैं, एक तो उपवन में लगा होता है जो प्रकृति को सुंदरता और सुगंध प्रदान करता है, और दूसरा फूलदान में लगा होता है जो मुरझा जाता है। जो फूल उपवन में होता है खुशी से झूमता है, लेकिन जो फूलदान में लगता है वह केवल अपनी किस्मत पर रोता है। सर्कस के पशु पक्षी अगर बोल पाते तो उनसे हमें पराधीनता के कष्टों का पता चलता। वे बेचारे अपने दुखों को बोलकर भी प्रकट नहीं कर पाते। हमें कभी भी मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें पराधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति जो स्वतंत्र होकर अनुभव करता है वह पराधीन होकर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आंधियों से लड़ सकते हैं वे कभी भी पराधीनता से पराजित नहीं हो सकते। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हो सुख नाही।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन कार्यक्रम। समय हो चुका है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनूप जलोटा को।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना अब यही समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में यही सुनते हैं स्लिप डिस्क कारण उपचार विषय पर जानकारी। डॉक्टर नर्मदा रांची से बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीमारियां अनेक तरह की हो रही हैं और सुगमता पूर्वक उसका इलाज भी किया जा रहा है। साधारणतः आजकल युवा साथी भी अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसी बीमारियां जो पहले बुजुर्गावस्था में होती थी, कमर में दर्द, पैरों में सुनापन, पैरों में झंझनाहट, इस तरह की बीमारियां आजकल आम हो चली है। ऐसे ही एक बीमारी है स्लिप डिस्क। ये रीढ़ की बीमारी है। क्यों हो जाता है, कारण क्या है और हम सावधानियां कैसे रखें कि इन बीमारियों से हम बच जाएं, और यदि स्लिप डिस्क हो जाता है तो इसका उपचार कैसे करें और कौन कौन सी बातों का हम ख्याल रखें, अपने जीवन शैली को किस प्रकार व्यवस्थित करें कि हमें कम से कम दर्द हो और हम स्वस्थ रहें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नर्मदे से। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर नर्मदे, आपका स्वागत है।
2: नमस्ते सर।
1: ये जो बीमारी है लो बैक पेन, बहुत कॉमन हो गया है, क्या कारण है इसका?
2: सर, अभी के समय में सबसे जो ज़रूरी है अपने लोगों का पोस्चर, शरीर का बनावट, दूसरा पोस्चर। सर, किसी भी काम को हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्पाइन अपना लोगों का जो होता है वो बहुत सीधा होता है, उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ भी किए, भारी वजन कुछ उठा लिए, कॉमन सी बात है, हम लोग हर एक कोई करवट लेके नहीं उठते हैं, सोए डायरेक्ट सीधे उठ गए, जबकि ये तरीका नहीं हुआ अपना लोगों का। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग सोए हुए हैं तो किसी भी एक साइड, या तो

0: ना तो प्रॉपर वे में थोड़ा पहले घुटने के ऊपर पहले बैठ गए हल्का सा, उसके बाद उठाए, तब वो जोर अपने स्पाइन पे ना आके और वो डायरेक्ट वो घुटने पे आ गया। तो सब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया अपना लोगों का पोस्चर। पोस्चर सही ना रहने के कारण हम अपने लोगों को जो है मेन स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम आता है वो उसके कारण से आता है।
1: एक कॉमन सा शब्द हो गया है स्लिप डिस्क, तो ये स्लिप डिस्क होता क्या है, किस तरीके से ये जो डिस्क है ये स्लिप कर जाता है, आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो?
0: अपने स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो होता है वो हल्का हल्का गैप होता है, वो पूरा एकदम सटा हुआ नहीं, कार्टिलेज भी उसमें होते हैं, फाइब्रस भी होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसमें गैप होता है। कोई भी चीज़ है तो वो अपने जगह तक जब तक है या जगह पे जब तक है तब तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, लेकिन वो जब अपना जगह छोड़ता है तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ समस्या वो आपको उसमें आता ही है। तो स्लिप डिस्क का मेन रीज़न हुआ जो बैंडिंग होके काम किए या फिर वजन उठाए उसके कारण होता क्या है, या तो गैप स्पाइन का बढ़ गया या फिर कम हो गया। बढ़ गया फिर भी प्रॉब्लम है, घट गया फिर भी प्रॉब्लम है।
1: जो गैप है
0: हर एक गैप का अपना एक दूरी बना हुआ है, लेकिन अपना लोग के गलत तरीके के कारण या काम करने के कारण वो गैप जो है घट जाता है, और गैप घट के अपना स्पाइन जो होता है वो अपना जगह छोड़ देता है नॉर्मली एक तरह से बोले हम लोग, तो वो हो गया अपना लोग का स्लिप डिस्क, वो जो हुआ वो बीमारी हो गया। अब जो है उसमें पोजीशन चेंज हुआ, उसके पास से जो आपके नस पास किए तो कुछ नहीं तो उसको तो डैमेज करेगा ही करेगा, तो उस कंडीशन में जो अपना लोग का पैर में झिनझिनी हो गया या फिर कमर में झिनझिनी हो गया या फिर सूनापन हो गया या फिर पैर भारी लगना हो गया या फिर कभी कभार देखते हैं अपना लोग की कमर में हल्का स्वेलिंग, बहुत रियल केस में स्वेलिंग, लेकिन मेन झिनझिनी, पैर का फटना, बहुत ज़्यादा पेन होना, उसके बाद सुन हो जाना, सुनापन, मतलब उसमें यदि आप कुछ भी करते हैं तो वो आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब ये हो क्या रहा है।
1: इससे जो व्यक्ति की दिनचर्या है, रोज़मर्रा की दिनचर्या है, वो बहुत प्रभावित हो जाती है। चलना फिरना, घूमना फिरना और काम करना, ये बहुत प्रभावित कर देता है। व्यक्ति अपने आप को लाचार और असहाय महसूस करने लग जाता है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की स्लिप डिस्क हो गई हमारे गलत आदतों के कारण, गलत तरीके से उठने बैठने और वजन उठाने के कारण, यदि इस तरह की बीमारी हमें पता चल जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि आप स्लिप डिस्क की बीमारी से आप ग्रसित हो रहे हैं, तो क्या इलाज है डॉक्टर साहब, उपचार किस प्रकार करें?
0: सबसे पहले तो एक है कि आप डायरेक्ट फिजियो के पास जा सकते हैं, अपने नज़दीकी आसपास कहीं भी आपके अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं, या फिर न्यूरो और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो हुए या न्यूरो के अपने जो कोई भी डॉक्टर हैं आसपास में, तो उनसे भी सलाह लेके हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि उन लोग इस केस में फिजियो के पास रेफर करते ही करते हैं। मेन तो है इसका कि अपना पोस्चर को पहले मेंटेन करें, सबसे पहले हम लोग पोस्चर के बारे में इसके लिए बताते हैं। दूसरा हो गया एक्सरसाइज, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट इसमें IFT, SWD या फिर ट्रैक्शन का भी यूज करते हैं। ट्रैक्शन का यूज हम लोग थोड़ा कम ही करें, क्योंकि वो भी एक तरह से बोलें तो स्पाइन को बढ़ाता ही है, खींचता है और उसका भी गैप बढ़ाता है, तो ट्रैक्शन से हम लोग बचाते हैं। बैकअप पूरा एक्सरसाइज इसमें करवाते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हो गया कि हॉट वाटर बैग कंपलसरी, इसमें गर्म पानी डाल के हॉट वाटर बैग से कम सुबह में 15 मिनट और शाम में 15 मिनट पहले हम लोग सेंकें। तेल मालिश एकदम हम लोग मना करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग का कहाँ पे प्रॉब्लम है या कहाँ पे नस को वो दाब रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसमें मसाज को बंद करवाते हैं। मसाज के जगह पे आप सेक सकते हैं। उसके बाद हो गया बैक लोअर का जितना भी एक्सरसाइज है इसमें सारा हम लोग करवाते हैं, जैसे पैर उठाना, उसको हम लोग SLR भी बोलते हैं। उसके बाद पिलो प्रेस, एड़ी से दबाना और घुटना से दबाना, वो दोनों आ गया। उसके बाद कैट एंड कैमल पोस्चर जो बोलते हैं अपना लोग, मतलब चुकमुको, वो भी मना करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें हम लोग आगे बैंड होने के लिए हम लोग मना करते हैं,
1: मतलब झुक कर कोई भी काम नहीं,
0: नहीं आगे झुक के कोई काम इसमें नहीं
1: जी,
0: और आगे झुक के वजन भी नहीं उठाना है इसमें
1: जी। डॉक्टर साहब, शुरुआती में जो चिकित्सक होते हैं वो दवाइयाँ गोलियाँ देते हैं, दर्द निवारक दवाइयों से हमें आराम महसूस हो जाता है, लेकिन ये जो दर्द की गोलियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कहीं ना कहीं परेशान जरूर करता है, कुछ ना कुछ प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ जाता है। इस तरह की दवाइयों का हम सेवन ना करें। और जो बाज़ार में जैसा आपने बताया मालिश नहीं करें, तरह तरह की बाज़ार में मालिश की दवाइयाँ उपलब्ध है और लोग उसका सेवन करने लग जाते हैं, उस दवाइयों को लेकर उसको मालिश करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? और

0: अपने जिंदगी को किस प्रकार व्यवस्थित करें?
1: लोग जागरूक हैं, ये भी नहीं बोल सकते कि लोग नहीं समझते या नहीं जानते। अभी के समय में लोग इतना एडवांस जरूर हो चुके हैं कि किसी भी बीमारी में उनको पता है कि हमको कहाँ पे किसके पास जाना है। यदि नस से संबंधित कोई बीमारी आया तो उनको पता है कि हमको न्यूरो के पास जाना है। यदि हड्डी से संबंधित कोई बीमारी आया तो उनको पता है कि हमको ऑर्थो के पास जाना है। हम लोगों का जो रोल होता है वो दोनों से हम लोग का बंधा हुआ है, न्यूरो से भी है ऑर्थो से भी है। दूसरा हुआ सर इसमें पेन किलर का ऐसे भी हम लोग 30 और 35-40 के बाद हम लोग मना करते हैं। पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, हार्ट में अपना लोग का बहुत ज़्यादा असर वो डालता है। अभी के समय में 650 mg, 700 mg डोलो या कोई और भी पेन किलर वो लोग होता है कि पर डे खाते हैं, आराम से रहे, चलो भाई कम हो गया। लेकिन वो चीज़ है ज़्यादा समय के लिए आपके साथ नहीं है, जब तक उसका असर है तभी तक आप ठीक हैं। उसका असर आपका ख़त्म हुआ, आप अपने वर्क में लौटे, आप अपना दिनचर्या में लौटे, फिर आपका पेन स्टार्ट हो गया। तो इसमें सबसे बेहतरीन हम लोग फिजियो को मानते हैं। फिजियो में भी है कि मेनली कुछ कुछ एक्सरसाइज, कुछ मशीन।
2: स्लिप डिस्क पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे, डॉक्टर नर्मदाई रांची से भेंट करते थे डॉक्टर श्री संजीव कुमार लाल। इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतनसर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-उत्तर-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीयर्तुविभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईक्कलेषु प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना प्रकाशिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्स्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकेंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकेंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से कुछ पलों के बाद बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। 7:30 पर शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा राग रंग। सुबह के 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। सुबह के 9:00 जोहार पलामू कार्यक्रम। 9:30 पर कुछ फिल्मी गीत हम आपकी सेवा में लेकर हाजिर होंगे। सुबह के 10:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती।

दिन के 1 बजे दिल्ली के केंद्रों से हिंदी समाचार रिले होंगे। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्रों से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 2 बजे समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 2:15 पर हिंदी समाचार और 2:30 पुनः विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले होंगे। 2:55 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 4:02 पर मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 बजे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से और 5:02 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5:35 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा युवावाणी। चर्चा होगी युवाओं में नशे की लत पर और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार की योजनाओं पर। पत्रकारिता में अवसर पर जानकारी देंगी अरुणा सिन्हा। शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर खेतीबाड़ी कार्यक्रम होगा। शाम 6:30 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम जननी। शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 पर स्वरांजलि कार्यक्रम में कलाकार होंगे गुलाम अली। रात्रि 7:45 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम महुआ। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का

रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। रात्रि 10 बजे रजनी गंधा कार्यक्रम सुनेंगे हमारे स्टूडियो से। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, पेश है बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। सभी बच्चों को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है रविवार का दिन और आज बच्चे रोज की रूटीन से थोड़ा रिलैक्स होकर रेस्ट करते हैं, बदमाशियां भी करते हैं, चुहलबाजियां भी करते हैं और खेलते भी हैं, साथ ही शरारतें भी करते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच, इन सभी बातों के बीच बच्चों, आपको अपने गार्जियंस का, अपने माता पिता का और अपने जो भी अभिभावक आपके साथ रहते हो उनकी बातों का मानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बच्चों द्वारा माता पिता का कहना मानना आपके सुखी, अनुशासित और सफल जीवन की नींव है। माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं जो प्रेम और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कहना मानने से बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, गलत रास्तों से बचते हैं और माता पिता के अनुभवों से लाभ उठाकर अपने जीवन में तरक्की करते हैं। बच्चों को माता पिता का कहना क्यों मानना चाहिए यह भी आपको जानना जरूरी है बच्चों। इसलिए क्योंकि वे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं आपके। माता पिता कभी अपने बच्चों को गलत सलाह नहीं देते, वे हमेशा बच्चे की भलाई चाहते हैं। अनुभव का लाभ भी आपको मिलता है। माता पिता के पास जीवन का लंबा अनुभव होता है जिससे वे बच्चों को गलतियों से बचाते हैं। सुरक्षा मिलता है और मार्गदर्शन भी मिलता है। माता पिता न केवल बच्चे का पालन पोषण करते हैं बल्कि वे जीवन के हर मोड़ पर सहारा और सही गाइडेंस भी उन्हें देते हैं। जो बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं वे जीवन में सही रास्ते पर चलते हैं और सफल होते हैं। बच्चे कहना माने इसके लिए भी कुछ बातें हैं, जैसे आपस में कम्युनिकेशन यानी संवाद होना चाहिए। बच्चों से आदेश की तरह बात करने की बजाय माता पिता को चाहिए कि उनसे दोस्ताना तरीके से बात करें और यह समझाएं कि कोई बात क्यों सही है, कोई बात क्यों गलत है। और धैर्य भी रखना चाहिए माता पिता को। बच्चों की बातों को सुनना चाहिए धैर्यपूर्वक और अपनी बातों को भी समझाना चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि वे खुद एक उदाहरण बने, बच्चों के सामने एक मिसाल पैदा करें ताकि बच्चे उनकी कॉपी करें, बच्चे उनके रास्ते पर चलें। माता पिता की आज्ञा मानना केवल आपका कर्तव्य नहीं है बच्चों, बल्कि आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए यह बेहद जरूरी है। जब आप माता पिता का कहना मानते हैं तो आपका जीवन खुद भी सफल होता है, खुशगवार होता है। आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए क्योंकि जीवन भर आपके जीवन में हर अधिकार आपके माता पिता जैसा ही होगा। उनमें भी कमियां, गलतियां और अनुभवहीनता हो सकती है। वे आपसे भी काम करने की मांग करेंगे जो आप शायद ना करना चाहें, लेकिन माता पिता का अगर कहना आप मानते हैं और उनकी छोटी छोटी कामों को उनके कर देते हैं या घर के कामों में अगर हाथ बटाते हैं तो उनके लिए भी और आपके लिए भी यह बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ माँ और पिताजी इतने अच्छे माता पिता होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी आप कह सकते हैं, इससे भी उन्हें खुशी मिलेगी और अच्छा लगेगा। सिर्फ माता पिता ही नहीं, अगर और भी कोई गार्जियन या चाचा चाची दादा दादी आपके साथ अगर रहते हो आपके घर में तो आप उनकी बातों को भी माने और उनके साथ भी अपना समय गुजारें और उनके अनुभव का भी आप लाभ लें। अक्सर भावनाओं की गहराइयों को संक्षिप्त में बयां करते हैं हमारे जो अभिभावक होते हैं। उम्र कैद ही सुन ली थी मैंने जब उसने कहा था कि दिल में जगह तुम्हारी ही है। ऐसे होते हैं हमारे माता पिता और जब वे हमारे साथ नहीं होते तब हमें उनकी कीमत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन वो यह नौबत न आए इसलिए अभी से आप अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी बातों को माने, उनका कहना माने। और अगर आप कहना नहीं मानते हैं तो देखिए आपकी माता जी आपको क्या

माँ तब भी अपना सिर ठोक लेती हैं और कहती हैं कि हम क्या करें जब बच्चे अपनी पढ़ाई करके और अपनी किताबों को जहाँ तहाँ बिखेर कर चलते बनते हैं, और माँ को सारे काम निपटाने के बाद फिर इन किताबों को समेटना पड़ता है। तो बच्चों, पढ़ाई के बाद अपनी किताबें सही जगह पर रहने की आप आदत डालें, यह एक बेहतरीन गुण है जिसे सकारात्मक अनुशासन और संगठन कौशल यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कहा जाता है। इस आदत को विकसित करने के कुछ आसान तरीके हैं। एक निश्चित स्थान बनाएं हर चीज़ के लिए, एक तय जगह जैसे कि बुक शेल्फ या डेस्क रखें ताकि आपको पता हो कि किताब कहाँ रखनी है। और जब आप किताबों को सहेज कर रखते हैं तो आपके माता पिता आपकी तारीफ भी करते हैं, इससे आपको और अच्छे से अपनी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखने में प्रोत्साहन भी मिलता है। बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं, इसलिए अभिभावकों को भी चाहिए कि अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखें। हर प्रक्रिया को मज़ेदार बनाएं, इसे एक छोटे खेल या क्लीन अप टाइम के साथ इसको जोड़ सकते हैं, और आप अपनी चीज़ों को सहेज कर अपने टिफिन बॉक्स को, अपने स्कूल बैग को, अपने जूते मोजों को तरीके से रख सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि अगर कहीं हम बैठे हुए हैं और किसी घर के बच्चे अगर अपने विद्यालय से लौट कर आते हैं तो अपनी चीज़ों को, अपने किताबों को, अपने बैग, टाई, जूते, मोजे जहाँ तहाँ बिखेर देते हैं, तो घर इससे काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। और एक माँ जो कि पहले से भी कई काम कर रही होती है घर में, तो उनके लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, उनका काम बढ़ जाता है और वो दिन भर घर को समेटते रहती हैं। तो ऐसा करके यानी अपनी चीज़ों को समेट कर, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रख कर आप अपनी माँ को उनके रोज़मर्रा के काम में आप मदद कर सकते हैं, हिस्सा बटा सकते हैं और उन्हें थोड़ी सी आराम तो आप दे ही सकते हैं।

इस प्यारे से गीत के साथ ही बच्चों आज के बाल सभा कार्यक्रम का समय अब यही समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। अभी आप सुन रहे थे बच्चों पर आधारित कार्यक्रम बाल सभा। समय हो चुका है शास्त्र संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम राग रंग का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गायन राग रामकली में वसुंधरा कोमकली से।

शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग रंग कार्यक्रम के तहत तो अभी आप सुन रहे थे गायन राग रामकली में वसुंधरा कोमकली से। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, और रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। आइए समाचारों के लिए हम अभी आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगढ़ मैत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवी के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
9: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
10: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4

0: श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमरीकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Center operationalizes 4 labor codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
6: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
5: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Guddebellur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care not-for-profit hospital. Founder of Tamil Nadu Vetri Kadagam, TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of the state today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai at 10 a.m. Tamil Nadu governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event. More from our correspondent.
7: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to Film World through Nalaya Tirpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Varan was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
5: President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as chief minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Mr. Rangasamy to form a new government in the Union Territory. More from our correspondent.
8: With the approval of the President, decks are cleared for the swearing-in ceremony of N. Rangasamy as the new Chief Minister of Puducherry on May 13. Mr. Rangasamy is set to assume office for a record fifth term after the ANRC-led National Democratic Alliance secured a comfortable victory in the Assembly elections. 76-year-old N. Rangasamy had earlier served as the Chief Minister of Puducherry from 2001 to 2006 and again from 2006 to 2008 as a Congress leader. After founding the All India NR Congress, he served as Chief Minister from 2011 to 2016 and later headed the ANRC-BJP Alliance government from 2021 to 2026. In the recently held Assembly elections, Mr. Rangasamy was elected from both the Thattanchavadi and Mangalam constituencies. In the 30-member Assembly, NDA has got the support of 18 MLAs, two more than the majority mark. Vibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
5: Assam BJP Legislature Party will meet in Guwahati today to elect its leader. The newly elected BJP MLAs will meet at the Atal Bihari Vajpayee Bhavan at 9 this morning. Meanwhile, preparations are in full swing for the swearing-in of the NDA government for a third consecutive term in Assam. More from our correspondent.
9: The BJP Legislature Party meeting will be held in presence of BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda and Co-Observer Nayab Singh Saini. Following the meeting, the NDA Legislature Party meeting will be held at the same venue. Thereafter, the NDA Legislature Party will meet Governor Laxman Prasad Chaya to stake claim to form the government. Meanwhile, preparations are being carried out on war footing at the Veterinary College ground in Khanapara for the oath-taking ceremony scheduled to be held on May 12. The Kamrup Metro District Administration has also issued a set of traffic regulations in the city for the day. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the swearing-in ceremony. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
5: The top brass of the Congress Party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting, convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence, was attended by senior party leader Rahul Gandhi, Party General Secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, General Secretary Organization K.C. Venugopal, and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures under the Labour Codes. By linking labour law compliance directly with eligibility for government contracts and bidding, the measures seek to curb delays in wage payments and defaults in statutory dues affecting contract workers. A report.
10: The new framework operationalizes worker protection envisaged under the four labor codes while introducing stricter penalties including debarment and blacklisting for firms violating timely wage and social security contributions. Under fresh instructions issued on Friday, ministries, departments, statutory, autonomous bodies and central public sector enterprises have been directed to strictly ensure that contractors disburse wages within prescribed timelines and the drawing and disbursing officers

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित। स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश में लोग परेशान। रांची में आज चलाया जाएगा विशेष स्वगणना अभियान। प्रशासन ने लोगों से डिजिटल माध्यम से भाग लेने की अपील। ऑनलाइन पोर्टल से स्वयं दर्ज कर सकते हैं जानकारी। खूंटी के जिलिंगा जंगल से पीएलएफआई के दो उग्रवादी गिरफ्तार। धनबाद में हथियारों के साथ दबोचे गए चार अपराधी। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गर्जन वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स तथा संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा अनुदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आंशिक बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री दीर्घावधि बाढ़ रोकथाम उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर राज्य की मूलभूत व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों की स्थिति खराब है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। अन्नपूर्णा देवी ने दावा किया कि राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।
1: अस्पताल की स्थिति इतनी बदतर है और बहुत ही कुव्यवस्था है। निर्बाध रूप से बिजली देने की बात झारखंड सरकार की थी, लेकिन आज की स्थिति है 6 घंटा 8 घंटा लोगों को बहुत ही मुश्किल से ये बिजली भी मिल पा रही है। और भ्रष्टाचार के वजह से नल जल योजना, जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना, आज आम लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस सरकार का जाना तय है।
0: जनगणना 2027 के तहत रांची जिले में आज विशेष सेल्फ एन्यूमरेशन ड्राइव चलाया जाएगा। उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने लोगों से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक डिजिटल माध्यम से स्वगणना में भाग लेने की अपील की है। प्रशासन ने बताया कि नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। जनगणना से जुड़ी सभी सूचनाएं जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। साहिबगंज जिले में समाहरणालय परिसर में सेंसस 2027 अंतर्गत आम जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से एलईडी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रचार प्रसार करेगा तथा नागरिकों को स्वगणना के प्रति प्रेरित करेगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर बैठक की। इसमें झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
2: पिछले बैठक में हम लोगों ने सभी स्कूल्स के साथ जो किए थे उसके नेक्स्ट फॉलो अप मीटिंग थी और 149 CBSE ICSE स्कूल्स में से 129 स्कूल्स ने अपना जो फीस मैनेजमेंट कमिटी गठित किया है और PTA भी गठित किया और पूरा अपलोड भी किया है। 20 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किए हैं और उनको सूचना भी नहीं दी है। जिला प्रशासन आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगी।
0: रांची व्यवहार न्यायालय परिसर में पलाश आजीविका कैफे का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। नगड़ी प्रखंड की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कैफे का संचालन करेंगी जहां पारंपरिक व्यंजनों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिलिंगा जंगल में छापेमारी कर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इनके पास से 2 देशी कट्टा और गोलियां बरामद की गई हैं तथा वे संगठन के लिए लेवी वसूली में सहयोग करते थे।
3: 2 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और इनके पास से हम लोग को 2 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं और जो बाकी लोग भी इसमें संलिप्त थे उनको भी हम लोग जल्द ही पकड़ेंगे। और इन लोगों में से जो एक व्यक्ति है पुलन पोंगाड़ी और एक व्यक्ति का नाम है इसमें राजू स्वान। जो पुलन पोंगाड़ी है इसके ऊपर पास्ट में भी आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं।
0: धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी जारी है।
4: बरवड्डा के एक व्यापारी को डरा धमका के इनसे पैसे वसूलने की तैयारी थी। जब इसके तह तक पहुंचा गया तब पाया गया कि 4 अभियुक्त थे जो प्रिंस खान और फिर मेजर वगैरह का नाम लेके गलत रूप से रंगदारी वसूल रहे थे। इसमें से एक जयकांत शिक्रे केंदुआ का रहने वाला है और नामी गिरानी डकैत था पहले और अभी भी इस टाइप चोरी चकारी वाले केसेस में संलिप्त रहता है।
0: देवघर जिले में पुलिस ने सारठ और खागा थाना क्षेत्र के गांवों में साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और संगठित अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी, साथ ही कहा कि संरक्षण देने वालों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अभियान में टोल फ्री नंबर 1930 के प्रचार पर जोर दिया गया है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए ओपन सिलेक्शन ट्रायल और तैयारी शिविर का आयोजन KIIT भुवनेश्वर

भुवनेश्वर में किया जा रहा है। 22 मई से काठमांडू नेपाल में आयोजित होने वाली कावा महिला चैंपियनशिप 2026 के लिए चयन परीक्षण कैंपस भुवनेश्वर में 13 और 14 मई को आयोजित होगा। जमशेदपुर एफसी को जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु के लिए मैच का एकमात्र गोल रयान विलियम्स ने 38वें मिनट में किया। मौसम विभाग ने रांची खूंटी समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गरज वर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 16 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने बंगाल में नई सरकार के गठन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, तमिलनाडु में विजय पथ, नतीजे के 5 दिन बाद बहुमत, शपथ ग्रहण आज। प्रभात खबर के शब्द हैं, विश्वविद्यालयों के वित्त विभाग में 3 साल से कार्यरत कर्मियों को बदलने का आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश में लोग परेशान। रांची में आज चलाया जाएगा विशेष स्वगणना अभियान, प्रशासन ने लोगों से डिजिटल माध्यम से भाग लेने की अपील। ऑनलाइन पोर्टल से स्वयं दर्ज कर सकते हैं जानकारी। खूंटी के जिलिंगा जंगल में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। धनबाद में हथियारों के साथ दबोचे गए 4 अपराधी। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गर्जन वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था।

राज्य का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन, आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत गुंजन, और मैं हूं आपकी दोस्त शर्मिला। आज का यह खास पल समर्पित है उस शख्सियत को जो हमारी पहली शिक्षक हैं, पहली दोस्त हैं और पहली दुआ भी। जी हाँ, आज बात माँ की। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ वो होती है जो खुद भूखी रहकर भी बच्चों का पेट भर देती है, जो हमारी छोटी सी मुस्कान के लिए अपनी सारी तकलीफें भूल जाती हैं। आज ही के दिन 1908 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहला मदर्स डे मनाया गया था और तब से एक परंपरा सी चल पड़ी मदर्स डे मनाने की। माँ किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती, माँ के बिना कोई दिन नहीं होता, माँ का हर दिन होता है। माँ के कदमों में जन्नत का नज़ारा देखा है, सच कहूँ तो मैंने खुदा को माँ में उतारा देखा है। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रिश्ता होगा जिसमें बिना शर्त प्यार मिलता हो, और एकमात्र रिश्ता है वो माँ का। जब हम टूटते हैं तो माँ संभालती है, जब हम हारते हैं तो माँ हौसला बनती है। कभी समय निकालिए, माँ के पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि कई बार हम जिंदगी की भाग दौड़ में उस इंसान को ही भूल जाते हैं जिसने हमें चलना सिखाया था। माँ की दुआ वक्त तो क्या किस्मत भी बदल देती है। दोस्तों, माँ को समर्पित कार्यक्रम का पहला गीत ये सुनते हैं।

माँ जिसकी दुनिया ही उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के इर्द गिर्द ही माँ की पूरी दुनिया घूमती है। कभी काजल का टीका लगाती हैं, कभी नजरें उतारती हैं और अपने बच्चे को चाहती हैं कि दुनिया की निगाहों से बचा कर रखें, कहीं किसी की बुरी नज़र न लगे। और बच्चे भी कई बार देखे जाते हैं कि अपनी माँ से बे इंतहा प्यार करते हैं। चलती फिरती हुई आँखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। पैसों से सब कुछ मिलता है पर माँ जैसा प्यार कभी नहीं मिलता। माँ को याद कर लेते हैं जब भी खुद को अकेले पाते हैं। मंजिल दूर है पर सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी में फिक्र बहुत है। मार डालती है दुनिया कब की हमें, पर माँ की दुआओं में असर बहुत है। माँ का प्यार सबसे ऊंचा, निर्विशेष और अनपेक्षित प्यार होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। एक माँ लाड़ करती है, दुलार करती है और अपने बच्चे को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनाने की पुरजोर कोशिश करती है,

दुनिया की सारी तकलीफों से राहत मिलती है, आराम मिलता है माँ के आंचल में। सारे गम अगर भुलाने हो तो माँ के आंचल का सहारा काफ़ी है। माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, माँ से बड़ा भी कोई हो तो बताओ। माँ का दिल सबसे पवित्र मंदिर है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपटूँ कि बच्चा हो जाऊँ।

तो दोस्तों, अगर आपके पास आपकी माँ है तो जाइए, आज उन्हें गले लगाइए और सिर्फ इतना कह दीजिए, माँ आप मेरी दुनिया हैं। और आप बेहद खुशनसीब हैं दोस्तों अगर आपके पास माँ है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं शर्मिला आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए यह गीत और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है जोहार पलामू कार्यक्रम का। प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन श्री संजीव कुमार लाल का।

सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, जोहार, सुप्रभात और दुनिया की तमाम माओं को बहुत बहुत बधाई मातृ दिवस की। सबसे पहले आज का सुविचार, धैर्य से कठिनाइयाँ आसान होती हैं, धैर्य से कठिनाइयाँ आसान होती हैं, विश्वास से रास्ते बनते हैं और प्रयास से सपने पूरे होते हैं। तो धैर्य बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें और लगातार प्रयास करते रहें, तभी आपके सपने पूरे होंगे, तभी आप अपनी सफलता की मंजिल को पा सकते हैं। बात करें मौसम की तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। कल यानी कि 11 मई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कल गर्मी का प्रकोप देखा जाएगा, आज से 2 डिग्री ज़्यादा रहेगा तापमान कल का। तो गर्मी से अपना बचाव करें, पानी पीते रहें और जहां तक हो सके ठंडी छांव में रहें या घर में रहें। बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे को, अपने बदन को ढक कर ही निकलें, और जहां तक संभव हो सूती कपड़े का प्रयोग करें और लिक्विड तरल पदार्थ समय समय पर लेते रहें तो आप मौसम का आनंद उठा पाएंगे। और आज मातृ दिवस के अवसर पर माता पिता को समर्पित यह गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जो है इस कार्यक्रम का पहला गीत।

सचमुच आपने अपने भगवान को नहीं देखा, अपने आराध्य को नहीं देखा, कोई बात नहीं, अपने माता पिता को देख लीजिए। धरती पर साक्षात ईश्वर का रूप आपके माता पिता। यह प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे और अब समय है समाचार सुर्खियों का। शुभेंदु ने संभाली पश्चिम बंगाल की कमान। राज्यपाल आर एन रवि ने पद एवं गोपनीयता की दिलाई शपथ। कोलकाता से खबर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शनिवार को शपथ ली। इस पद पर पहुंचने वाले वे भाजपा के पहले नेता हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर एन रवि ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शुभेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने भी ली शपथ। शपथ समारोह में शामिल हुए कई दिग्गज। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि देश के नए CDS नियुक्त हुए। सैन्य कार्य विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार की सुबह उनकी नियुक्ति की घोषणा की। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका 30 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि सैन्य कार्य विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे और उनकी नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी मानी जाएगी और वह अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि 1 सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वे 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख रहे तथा मार्च 2003 से जून 2024 तक केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं। निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ उपायुक्त ने की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। खबर रांची से ले रही हूं। रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भदंतरी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों के प्राचार्यों प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी सहित जिले के निजी विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला मंजुनाथ भजंत्री ने निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ के गठन की समीक्षा की। जिले में CBSE एवं ICSE की ओर से संचालित कुल 149 स्कूलों में से 129 द्वारा अभिभावक शिक्षक

संघ का गठन कर लिया गया है। बाकी 20 स्कूल जिन्होंने पीटीए के गठन की जानकारी नहीं दी है उनके ऊपर अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच समर्पण शाखा ने ओल्ड एज होम में मनाया मदर्स डे। मारवाड़ी युवा मंच रांची समर्पण शाखा की ओर से मदर्स डे के अवसर पर पिस्का मोड़ स्थित आदर्श ओल्ड एज होम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व शुभा अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम की प्रभारी पायल जैन और संयोजिका रश्मि राजगढ़िया रही। इस अवसर पर बुजुर्गों के साथ केक काट कर मदर्स डे मनाया गया। साथ ही कई तरह के मनोरंजक खेलों का भी आयोजन किया गया और भोजन का भी वितरण किया गया। झारखंड में बारिश से मौसम सुहाना, कई जिलों में झमाझम बरसात, 15 मई तक येलो अलर्ट जारी। झारखंड के में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी है। इस बीच मौसम विभाग ने मई माह के ज़्यादातर दिनों में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गर्जन, तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल के खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव के कारण झारखंड में मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश होने और तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक 45.4 मिलीलीटर बारिश गोड्डा में दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। कई इलाकों में लोगों ने उमस और गर्मी से राहत महसूस की है। कुछ खबरें पलामू प्रमंडल से। पलामू के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी यह पहल। यह कहना है डीसी का बसौरा फॉर्म में विकसित आधुनिक मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल को लेकर। पलामू जिले में कृषि एवं किसानों की आजीविका को नई दिशा देने के में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नीलाम्बर पीताम्बरपुर प्रखंड अंतर्गत बसौरा फार्म में आधुनिक मल्टीलेयर फार्मिंग प्रणाली विकसित की जा रही है। शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह से शेखावत ने निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों का स्थल निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों एवं संवेदकों को सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से जल्द ही पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री शेखावत ने कहा कि बसौरा फार्म में विकसित किया जा रहा है यह मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल पलामू के कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल केवल एक परियोजना नहीं बल्कि आधुनिक एवं बहुआयामी खेती की दिशा में किसानों के लिए प्रेरणादायक मॉडल साबित होगी। इससे किसानों को कम भूमि में अधिक उत्पादन एवं आय के विविध स्रोत विकसित करने का अवसर मिलेगा। उपायुक्त ने कहा कि इस परियोजना के तहत कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को एकीकृत रूप से विकसित किया जा रहा है ताकि भविष्य में यह केंद्र समेकित कृषि प्रणाली के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में स्थापित हो सके। यहाँ किसानों को आधुनिक तकनीकों पर आधारित खेती एवं कृषि आधारित गतिविधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान मल्टी लेयर फार्मिंग परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे सब्जी नर्सरी, शेड, नेट हाउस एवं पॉली हाउस, मशरूम स्पॉट यूनिट, औषधीय पौधों का गार्डन, ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती, कोल्ड चैम्बर की मरम्मत, बड़े तालाब का निर्माण, फिश कम डक फार्मिंग, दाल मिल, मेडिकल प्लांट, गार्डन, सिंचाई हेतु पंप यूनिट, छोटे कृषि उपकरणों की व्यवस्था, बकरी पालन तथा 400 लेयर मुर्गियों की पोल्ट्री यूनिट सहित विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तालाब की आउटलेट व्यवस्था के संबंध में पूरी जानकारी लेते हुए यह निर्देश दिया कि पूरे साल तालाब में पर्याप्त जल उपलब्ध रहे, इसके लिए स्थायी और मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 12वीं नतीजे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को डीसी और डीडीसी ने किया सम्मानित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा घोषित 12वीं परीक्षा के परीक्षा फल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह से शेखावत एवं उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन ने पौधा, मोमेंटो और किताब देकर सम्मानित किया। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस सम्मान समारोह में जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में विज्ञान संकाय से RK प्लस टू हाई स्कूल पाटन के MD फैजान आलम राज्य में दूसरा रैंक लाए, प्लस टू सर्वोदय हाई स्कूल सतबरवा की सना अरफिन राज्य में तीसरा और BS इंटर कॉलेज कुंवरबाद पाटन के शुभम कुमार शामिल रहे। वहीं कला संकाय से प्लस टू
आरके हाई स्कूल हैदरनगर के प्रियांशु कुमार, एमके इंटर कॉलेज पांकी की तृप्तिका कुमारी, शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज जपला के यश कुमार तथा प्लस टू आरके गर्ल्स स्कूल हुसैनाबाद की मानवी रानी को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आज की समाचार सुर्खियां समाप्त होती हैं। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जी हाँ, न वो छुपा कर जियो, न सर झुका कर जियो। और जब इतिहास के पन्ने हम पलटते हैं तो कई सारी गौरव गाथाएं भी वहाँ अंकित होती हैं, जिस पे हम गर्व कर सकते हैं और सिर उठाकर जी सकते हैं, क्योंकि हम हैं भारत के रहने वाले। आज की तारीख की बात करें तो आज है 10 मई। भारत में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से आज ही की तारीख को हुई थी। 1934 में नेल्सन मंडेला का दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ आज ही की तारीख को हुआ था। और 1904 में फीफा की स्थापना इसी दिन हुई थी। 1908 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहला मदर्स डे आज ही की तारीख यानी 10 मई को मनाया गया था। 1993 में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर लगातार दो बार पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी। 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने की सहमति आज की तारीख को बनी थी। 1927 में प्रसिद्ध लेखिका नयनतारा सहगल का जन्म आज ही की तारीख को हुआ था। 1980 में कारगिल युद्ध के नायक परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव का जन्म आज की तारीख को हुआ था। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म आज की तारीख को 1905 में हुआ था। और 2002 में फिल्म जगत के प्रसिद्ध उर्दू शायर कैफी आजमी का निधन आज की तारीख को हुआ था। आज के दिन को मातृ दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये सुनते हैं।

0: इस गीत के साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: ਨਾਨੂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है बहारें फिर भी आएंगी, आवाज मोहम्मद रफी की।

दहलीज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में। इसके साथ ही आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपसे मिलेंगे कुछ फिल्म गीतों के साथ। अभी दीजिए हमें अनुमति और बने रहिए हमारे संग। आइए समाचारों के लिए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहाँ से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
0: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उर्मिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई की
1: सब चाल थे, सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो, जैसे पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: आती थी, सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके, लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके, अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह।
1: पहली बार मैं बम्बई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके,
0: संगीत शारदा।
1: संगीत शारदा।
0: जी जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी।
0: हाँ।
1: तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी।
0: जी
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी जी,
1: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के,
0: ये महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला
0: विश्वविद्यालय
1: नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया।
0: ओहो।
1: यूथ फेस्टिवल में तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ।
0: हाँ,
1: बहुत मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है।
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर
0: सके?
1: जरूर

0: वाह वाह, क्या
1: जितना
0: बात है।
1: याद था।
0: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब
1: बिल्कुल
0: स्त्रियां जो है

0: महिलाएं जो है भूमिका नहीं करती थी
1: नहीं करती,
0: स्टेज
1: पुरुष
0: पर, तो
1: लोग
0: पुरुष की
1: स्त्री
0: करते थे,
1: भूमिका
0: जिसके
1: है
0: लिए
1: या
0: नारायण राजहंस यानी
1: बाल
0: बाल गंधर्व
1: गंधर्व
0: जाने
1: जी।
0: जाते हैं,
1: राइट राइट
0: और बहुत से केशव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार
1: जी
0: प्रसिद्ध हुए
1: हाँ।
0: अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के
1: तो
0: लिए,
1: यहाँ उल्टे मामला हो
0: और
1: गया
0: मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
1: पुरुष
0: यहाँ
1: भूमिका
0: इस
1: निभाई।
0: नाटक में निभाई थी।
1: हाँ जी
0: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था,
0: जी
1: हम
0: जी
1: हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला, और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने,
0: हाँ।
1: तो उसमें भी मैंने रोल किया था,
0: अच्छा
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे
0: जी
1: शाला में
0: जी
1: कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी तो उन्होंने मुझे चुना, और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है कभी पता नहीं शुरू है, तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके,
0: जी जी
1: तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक, और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की तब शादी हो गए।
0: अच्छा
1: 42 साल का मेरा जन्म है और
0: हाँ।
1: 58 को शादी हो गई 16 साल की,
0: हाँ।
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने,
0: जी
1: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो, एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनडीटी में, तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
0: वाह
1: और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक झिझक होती है कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी
0: अच्छा
1: बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर, और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा
1: तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस कप के मेंबर थे, तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस कप का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, हमने चलेगी कूदते जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा,
0: क्या बात,
1: और 2 बेटियां, एक 4 साल की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
0: जी जी
1: उनका यहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछ, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे, बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं,
1: मराठी में गाने थे
0: जी जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
1: तलत साहब के साथ गए।
0: हाँ।
1: फिर उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ,
0: हाँ हाँ,
1: जाने के लिए। मैंने कहा बाबा भाई, मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ, हाँ।
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए। तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ।
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
0: हाँ।
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी, जी।
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज,
0: हाँ।
1: तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी।
0: जी, जी।
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
0: हाँ,
1: किया
0: हाँ,
1: उनको,
0: जी, जी।
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर सब गायक कलाकार लेजेंड्स है, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमते हैं, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी, जी।
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा। और एक बार स्टेज पे गए, छुट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के
0: हाँ,
1: ये लोगों को सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे। रफी साहब को
0: किशोर दा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: ड्यूएट नहीं गाया,
0: नहीं गाया। अगर किशोर दा को याद करने के लिए कोई गीत हम सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले दूसरों
0: मतलब
1: के
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बंद के, इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए, अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू, एक छोटा छोटा
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ।
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में। मेरी
0: अच्छा
1: सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो,
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर।
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो हो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता भाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती।

0: आशा भाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले गाने, अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक जाती है, तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपने वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस क्लासिकल म्यूजिक का। तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
1: क्या बात है
0: भेजे। अच्छा, कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके जी, साथ गाए, लेकिन बहुत गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है।
1: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
0: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक का,
1: अच्छा,
0: मोह मोह के धागे,
1: मोह मोह के धागे दम लगा कर हैशा, इस फिल्म
0: दम
1: का
0: लगा के हैशा उसका
1: ये, लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: हाँ,
1: हारमोनियम पे,
0: मोह मोह के है
1: तो
0: और
1: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: है, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: तरह
0: है,
1: से
0: ये
1: गाते थे
0: आपका हमेशा से रवैया रहा
1: या
0: है क्या?
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं की आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी गीता
0: हाँ,
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद
0: आशा
1: हैं
0: जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो
0: बिल्कुल
1: आवाज डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी
1: हूं
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: अनुभव आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा नहीं
0: हाँ
1: होना
0: हाँ
1: चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही लता
0: बिल्कुल
1: मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे
1: गली
0: हो जाते।
1: चौबने
0: क्या
1: में
0: बात है, तालीम बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: क्लासिकल सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, फिर जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट, मैं
0: हाँ
1: अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वैरायटीज वो
0: हाँ
1: करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल,
1: आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ हाँ
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं
0: खैर
1: अभी
0: बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे गाते थे
0: सही बात, बिल्कुल
1: ना
0: सही। मन्नदा की बात करते हैं,
1: जी,
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्नादा के
0: किया,
1: साथ, हाँ
0: संगीतकार थे श्री
1: श्री
0: रामचंद्र, तो
1: रामचंद्र,
0: मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ
1: बड़ौदा में मन्नादा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
0: जी,
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी जी
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी की आवाज़ में जाता होता है किसी की आवाज़ में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपनी आवाज़ में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे ऐसे आघात करते जाओ, और
0: अच्छा,
1: मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब
0: ओहो
1: रियाज करके,
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा, फिर भी उन्होंने ये भी बोला
0: हाँ
1: कि ज्यादा नहीं करना,
0: हाँ
1: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में बहुत ही,
0: अच्छा
1: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: हाँ
1: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
0: जी जी
1: बांबू चा वना च झ झ बहुत से, बांबू चा वना झऱ्या चा काठी, ये
0: हाँ
1: शील सजणे सजणे
0: हाँ
1: माझाच पाठी,
0: बिल्कुल,
1: ये
0: उनके
1: लाइन
0: लिए
1: थी,
0: टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत
0: रहा हो
1: बहुत 3 बार हुआ टिक 4 बार हुआ इतने बार, या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो
0: जी जी
1: उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
0: हाँ हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: बराबर ये
0: नुक्ता लगा
1: करके
0: के,
1: लाइन
0: क्यों
1: में,
0: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें?
1: हाउस ऑफ बैम्बू
0: जी,
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द हाउस, जिसे मॉड्यूलेशन
0: हाँ
1: फोर की उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है,
0: जी,
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर बांबू से घर बांबू से दार बांबू ची जमीन पिरुड़ी शार बांबू से घर बांबू से

0: स्वप्नाचा झुला ला ला ला ला झुलवित राहील पापा पापा तुला आणि मला नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो क्या
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है. हाँ. मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने हैं.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह,
0: बहुत अच्छा, थोड़ा सुना दे.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लिखावट।
0: संगीता गाना,
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी। इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन, उसमें क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूं, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं

0: पूर्ण हूँ तो मैं और
1: ओ
0: क्या करूँ, और किसी
1: क्या
0: का
1: बात,
0: किसमें हाथ क्यों डालूँ मैं।
1: विनम्रता की हद है।
0: हद है, हद है।
1: ओ हो।
0: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो
1: जी जी
0: मैंने वो
1: जी
0: कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है,
1: हाँ
0: तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें
1: हाँ
0: तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
1: जी जी
0: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी
1: जी,
0: है
1: क्या बात, वाह
0: बहुत
1: वाह।
0: अच्छा
1: अब
0: लगा
1: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं,
0: जी।
1: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
0: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे
1: हाँ,
0: सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो
1: विक्टोरिया
0: मिल
1: नंबर
0: गए
1: दो
0: हो,
1: सुखी। हाँ
0: हाँ,
1: जी, हाँ जी,
0: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
1: जी,
0: हाँ,
1: हंसते
0: हंसते
1: जख्म।
0: जख्म,
1: जी,
0: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: हंसते
0: और
1: जख्म फिल्म
0: हाँ
1: का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब ही उनके

0: मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज टू बिलीव इन डेस्टिनी, आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो सिनेमा जाएगी शुरू हो गई, पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मान जाएगी की रिलीज के एक महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांदरा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था, आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रुपए कैश दे गए, वो थे नडियाडवाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वॉकर से, वही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे, कि हसीना मान जाएगी भी वो थे, हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे, तो अपने घर से लाके हमें देते थे, बोले मगर एक हफ्ते में ले लूंगा और हम एक हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वॉकर से पूछा कि एक ऑफर है नजाड वाले की और एक ऑफर है मलिक चंद कोचर की, उनकी चार ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसे कभी होता है, एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा, सोच तो लिया। तो जॉनी वॉकर ने कहा सब कर ले।
1: निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई, फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह के काम किए आपने।
0: प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था
1: जी,
0: बिकॉज आई यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पर सामान उठाया, कुलीगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था।
1: तो ये जो जंजीर की हम बात करें,
0: अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे
1: जी,
0: बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, उनकी सारी उम्मीदें थी। अभिनंदन की फिल्म बंदेहाल बन रही थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित तुबर यार कैफियत की, तो फिर मैंने जया से बात की जो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा भाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा भाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त, दो ही नाम लिए जाते थे, पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे, नहीं मैंने केदार कपूर को बोला है वो बना रहा है, तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, वो दे दिया। और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ, बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मेंद्र ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली है इंस्पेक्टर और पठान के आगे, बोले यार आगे उसे मालूम है वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार, इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। किताब को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे। और हंसा बहुत वो, एंड मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा था कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी ये लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। मैंने कहा ना कीप ऑन चेंजिंग द इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव मेड मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाई। मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे, तो राज जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा आनंद बहुत तारीफ करता है, चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते। मैंने कहा राज जी अभी 4-5 दिन में सेंसर हो जाएगी, मैं प्रिंट आपको, नहीं नहीं नहीं मैं थिएटर

मैं देखूंगा, यूसुफ भाई से बोले भाई हम भी देखेंगे। बहरहाल मफहूम क्या है, लुबे लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है, राज्य की संगम है। आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता था।

0: होते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और
1: हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं मनीषा जी, कि हमें विविध भारती के माइक से बोलने का मौका मिलता है, हमें अपने श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का मौका मिलता है, हम अपने श्रोताओं के साथ अपना विविधा का खजाना, विविध भारती का खजाना बांट पाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं।
0: और अमर जी, आज की इस विविधा को हमारे श्रोता याद रखेंगे, इस उम्मीद के साथ अब इजाजत लेते हैं, क्योंकि अगली विविधा में क्या लेकर आना है इसकी भी तो तैयारी करनी है।
1: बस
0: तो
1: निकलते ही लग जाएंगे अपने काम में,
0: और इस वक्त तो ले लेते हैं इजाजत। तो आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमाना एन्द पोरुलैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त की संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: ना मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
3: पल पल दिल के।
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और शुरू में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

तेरी मुदली की धुन सुन सपनों में गुम सुन बैठी है।

0: पॉलिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत बद्ध किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक उलड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से सवारा है चित्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी, इस फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदीवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब दीजिए यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक। चीन को 5-4 से हराया। टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहित शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए एक प्रेरणादायक संदेश दिया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऐतिहासिक तारीख है। श्री मोदी ने कहा कि साहस और शौर्य की यह विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
1: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में बड़ी सफलता हासिल की। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कंबस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना चतरा जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ जिले के किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता बन चुकी है। सिमरिया अनुमंडल के इचाक पंचायत के नवाटाड़ गांव के सभी किसान इस योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठा रहे हैं। किसान मित्र संजय कुमार ने बताया कि PM कुसुम योजना से किसानों ने डीजल और पेट्रोल पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। अब किसान निर्भीक होकर खेती करते हैं।
3: प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए अति आवश्यक योजना है। इस योजना से किसान खेती में तरक्की किया है, अच्छे से खेती कर पा रहा है, पानी की सुविधा भी अच्छी हो जा रही है और न तो डीजल का खपत है न पेट्रोल का खपत है और मोटर भी लगाने की जरूरी नहीं है, मोटर कंपनी लगा के देती है, खेती अच्छे ढंग से हो रहा है।
0: जमशेदपुर में विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर अनुराग फाउंडेशन द्वारा जागरूकता एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम थी अब छिपे नहीं, जिसके तहत अनपहचाने मरीजों की पहचान और पीड़ित परिवारों को सहयोग देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, अभिभावक, चिकित्सक और समाजसेवी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची ने इस बीमारी को रोकने के लिए समय पर जांच और जागरूकता की आवश्यकता बताई।
4: आज के समाज को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज एक बार शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवा ले, ताकि आगे इस तरह का बच्चा ना हो, क्योंकि एक बार अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो गया तो लाइफ टाइम उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ब्लड चलाने के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट से रखने का। जैसे हमारे अदर बच्चे हैं वैसे हम लोग भी है, वो जो काम कर सकते हैं हम भी वो सारे काम कर सकते हैं। तो प्लीज हमें किसी से तुलना ना करें, हम भी एज अ स्पेशल है।
0: खूंटी गुमला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र भालू टोली के पास रनिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा से लदे एक ट्रक को जब्त किया। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक, खलासी और डोडा खरीददार मौके से फरार होने में सफल रहे। फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे के अवसर पर सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि मां केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और असीम ममता का स्वरूप है। एक मां ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिनके स्नेह और मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने सभी माताओं के स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि आपका स्नेह, समर्पण और शक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मातृत्व भाव की मिसाल पेश करते हुए कोडरमा के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की निदेशक संगीता शर्मा ने सड़क हादसे में अपने बेटे को खोने की पीड़ा को समाज सेवा और शिक्षा की मिसाल में बदल दिया है। उनका कहना है कि विद्यालय के हर बच्चे में उन्हें अपना बेटा नजर आता है, इसलिए बच्चों को शिक्षित और संस्कारी के साथ साथ बेहतर इंसान बनाने में जुटी हैं। उन्होंने बच्चों को जीवन रक्षा में हेलमेट के महत्व को लेकर जागरूक किया।
5: कोई भी बच्चा अगर मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हुए दिख जाता है तो मैं स्कूल में ही कान पकड़ के एक चपत लगा दे, और पता नहीं क्यों मेरा एक आध चपत लगाया हुआ उन लोग को बुरा भी नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता कि मैं उन लोग को यही कहती हूँ कि एक मैंने खो दिया है, दूसरा मैं खोना नहीं चाहती। इसलिए जब भी तुम लोग बाइक चलाओ तो तरीके से चलाओ, इतनी तेज ना चलाओ कि कोई दुर्घटना घट जाए।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। कोडरमा जिले के सतगांवा प्रखंड के मंडरोडीह गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में भी वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चतरा जिले के टंडवा के बड़गांव में भी एक किशोरी की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के ग्राम गोरहर में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पहली घटना में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना में 4 वाहनों की टक्कर से हादसा हुआ। हॉकी झारखंड ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अनुरूप संविधान और उपनियमों को अपनाने के लिए 24 मई को विशेष आम सभा की बैठक बुलाई है। यह बैठक मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची में आयोजित होगी, जिसमें संविधान संशोधन और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत शामिल थीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को किया याद। कहा, शौर्य और सामर्थ्य की यही विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत। पीएम कुसुम हरित ऊर्जा योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान। चतरा जिला योजना का लाभ लेने में बना अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे पर सभी माताओं को किया नमन, दी हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, स्नेह, समर्पण और शक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक, चीन को 5-4 से हराया। टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नजर उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही है कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी, वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए

सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और जरा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया है कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत

0: बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहते हैं कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में। लेकिन एक संदेश और है, हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात। अपनी HMT के रिस्टवॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी HMT की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे, तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे, और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी, अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूं क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूं, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।
1: आई बहारा जाई बहार, बहारा आई बहार, गुलशन में

शीशे डाले जो यूं चूम उठी, इस मस्त से इनकी आंखें लड़ी, मस्ती से डाले जो यूं चूम।

दिया होने को है आज फूलों का बुलबुल से दिया होने को है आज थालों में तंदल आने को है आज प्यालों में उबलन।

0: सब नहीं है ये शादी नहीं, आओ दुनिया बदलने का दिन आ गया, ले फूलों के हार बहार आज आई बहार, बहार आज आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिवहरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी, क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूं तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, इंसान जीना है इस पल को जी ले, क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा, अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा, क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए सिर्फ

स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती, तब अचानक हवा में तैरती चप्पर रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना बताइए, किस फिल्म का है और आवाज किन की?

सभाओं में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है। उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ वीजा बगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखी थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

कृष्ण के बोल मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में मां बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का कांटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों कांटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

0: After the match ended, tied at 4 all following 4 sets, the Indian trio held their nerve to edge past China 5-4 in the shoot-off. Veteran Deepika Kumari sealed India's first archery World Cup gold since 2021 with a crucial final arrow under pressure. Earlier, India had stunned record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-finals. And in IPL cricket, Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M. H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई

0: चाहती है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
0: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் சாத் 9 மந்திரியும் சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक

0: प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है।

0: और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में। प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चो, आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे, कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी कहना, तुम तो पढ़ा है नीचे उतरला।
0: अरे

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: अम्मा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता, एक तू ही क्या मुझको भी।

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

फोन हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ।

0: मोहम्मद रफी का गाया औलाद फिल्म का ये गाना बाहर
1: इस
0: लेकर
1: पर
0: आए।
1: काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
2: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बेनीदास भूसका तक बनने वाली सड़क की आधारशिला रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए डीएसओ सहित विशेष टीम गठित की गई है और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है तथा भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सी जोसेफ विजय को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा जताई कि उनके नेतृत्व में तमिलनाडु विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने असम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित

0: शाह की रणनीति के तहत भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज मदर्स डे पर मां की ममता को सभी लोग याद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि मां केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और असीम ममता का स्वरूप है। एक मां ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिसके स्नेह तथा मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने मदर्स डे पर सभी मतदाताओं को नमन करते हुए शुभकामनाएं दी। खूंटी जिले में लकड़ी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के निर्देश पर कल जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में लकड़ी तस्करों के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान में चालक को लकड़ी लदे वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है।
1: गश्ती पार्टी के द्वारा उसको जाके जब इंटरसेप्ट किया गया तो उसमें देखा गया कि लकड़ी अवैध रूप से काफी ज्यादा संख्या में वो काट करके लेके जा रहा था और फिर वहां पे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। लकड़ी को जब्त किया गया और जो व्यक्ति इसमें संलिप्त था, जो ड्राइवर के रूप में गाड़ी भी चला रहा था, उसको भी हिरासत में लिया गया।
0: हजारीबाग जिले के बरकट्टा में आज दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित मालवाहक वाहन पुलिया के नीचे जा गिरा जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घटना में गोरहर गांव में चार वाहनों की टक्कर हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने।

भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत ने पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूरका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है। जो आ रही है इस गीत के साथ, आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

0: आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मनचाहे गीत
2: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
4: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
5: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
4: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है, अबे सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते के पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
5: है, बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
4: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
5: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ, उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था, मैं छिपकर खिड़की के पास हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
4: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
5: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
4: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
5: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा, अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
4: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव का मियां महल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है, शिव का में अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए जा

0: माजी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी? आपका तार है माजी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है?
1: और क्या कहता? शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी,

0: मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
1: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ, अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
0: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो।
1: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ, मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
0: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
1: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
0: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
1: कंद स्वामी कौन?
0: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
1: क्या कह रही हो माँ, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
0: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
2: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
0: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर ले, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ हमारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये। लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: Oh, damn it. इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्या सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है। ओ, ओ, ओ, अरे छोड़ मेरी मूछें।

0: दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मुझे है। हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो, शिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूंछें और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल, कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे? पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन? अंकल सिंगारम, ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: शिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ, भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है?
0: तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी
0: है? ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: शर्मा जी, ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं, मैं भाग आया। और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही

0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
1: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब?
1: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हत

0: क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
1: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीलम होश में आ गई।
0: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
2: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी, इसे नहीं चाकू भोका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
0: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
2: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है, हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
0: अच्छा, तो श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता है। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी, कंद स्वामी को छोड़ दो।
3: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
0: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं?
4: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था, ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
2: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
4: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्ट मास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं।
1: नीला, देखो तो कौन आया है।
0: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंदे स्वामी।

0: तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
1: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
1: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूँ? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
1: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई, मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंदस्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंदस्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंदस्वामी, मंजूर है ना?
1: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णास्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चंबलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती बेचारा।

0: सितारा में आज
1: उजाले।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान मंदिर और नौ सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से शांत युवाओं से विकसित भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा, जल और बिजली का संरक्षण आर्ट ऑफ लिविंग है। श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। असम में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। श्री नड्डा ने बताया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। बाद में श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया। 12 मई को दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से दो दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिवपी नेहा तिर्की शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक्सटिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए डीएसओ सहित विशेष टीम गठित की गई है और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है तथा भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के तत्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में खूंटी, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
4: जी।
3: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
4: अरे बाप रे।
3: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास

0: पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
1: हीरोइन ये भी हैं।
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए हम। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया, और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
1: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
0: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
1: कनेक्शन
0: सब कुछ। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊं, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब,
0: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर में 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं, एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सब ने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है। अच्छे तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर आए वहाँ पे। तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली कभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। उनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे।
1: ओ
0: बीच बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सिटिंग करते थे इनके घर पे, गानों की भी कुलदीप याजस से बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना सी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: जी। वो उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में? तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे। बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं अगर आपको सूट करता है। तो उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे?
1: हाँ हाँ।
0: हाँ लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया। तो गाने वाने अब था, उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है। बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए? मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा।

0: टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं है।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार
0: साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह ले हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, तो कर लीजिए, वो मान गए। यश जोश की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोश, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे,
0: कहानी ढूंढ रहे, क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग। तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया। उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज ए राइटर। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का, तो उन्होंने भी कहा ठीक है। उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, कभी पिक्चर बनाते वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं
1: जी।
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता सर
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया, थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनकी, से जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 साल सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने, तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा,
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुन, इतनी देर सुन सकता हूँ इतने, जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो थोड़ा सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो

0: सजेशन लेनी गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे। कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला कर दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो 13 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप में,
1: बहुत बड़े मेकअप में मेरी फिल्म

0: फिल्मों के मेकरमैन भी वो थे। और जब मैंने नूरी प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुक्कर का भी शेयर था 5%।
1: बाबा
0: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सदी राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो जस जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
1: जी जी जी गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए,
1: ओहो
0: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
1: प्रदीप को लेके,
0: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो सब रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बता,
0: दिलीप साहब को बता दी।
1: ओहो हो गजब,
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
1: हाँ,
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिले मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी हो वहाँ के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
1: अच्छा
0: जारा,
1: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
0: सागर यारा
1: किताब में आई,
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत जब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, और तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि वो मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर साहब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी और डेटे पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे, अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों बाहर आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बातें,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों जाए, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए।
0: वो
1: उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रामनाथ वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए।
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि तो जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
0: अटक गया,
1: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को यह कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले से शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो, के जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल लगाएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला क्योंकि वाइस ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। श्री शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बेनीदास भूस्का तक बनने वाली सड़क की आधारशिला भी रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। गढ़वा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी क्रम में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा के चलने, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

वो एक मुख्तसर सी मुलाकात, कुछ नाजुक से जज्बात छलके थे उनकी आंखों में, आते आते कुछ ठहर सा गया था उनके लबों पर, एक छलक देख लिया था कभी आपको, वो कसक दिल से आज तक न गई। काश काश वो एक और मुलाकात का वादा तो करते, देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, अब तो सूरत दिखा हिजाब न कर।

मोहब्बतों में नुमाइश की जरूरत ही कहाँ। ये तो वो जज्बा है जिसमें खामोशी भी गुनगुनाती है। लहराते आंचल की बात न पूछिए, रह गई जो दिल में वो बात न पूछिए। इकरार मोहब्बत की अदा तो देखिए हुजूर, जुल्फें जब वो मेरे चेहरे पर बिखरा देती है, बड़ी सादगी से फिर वो मुस्कुरा देती है।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। जिंदगी इश्क मोहब्बत से जवां होती है। कल तलक सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी जुबां है जवां मोहब्बत की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

कहां का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए। मोहब्बत की कोई हद कोई सरहद नहीं, गुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी।

वो दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह। उफ ये लहराते गेसू ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए इनके साए तले। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं।

अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको अभी की सभा में पेश होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं।

अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। युवाणी कार्यक्रम में आज हम आपके लिए पेश करेंगे एक वार्ता, विषय होगा पत्रकारिता में अवसर। वार्ताकार होंगी अर्पणा सिन्हा और इसके अलावा ढेर सारी हम गायन की बातें करेंगे और आपके लिए पेश करेंगे मनोरंजन। 6:00 प्रादेशिक समाचारों का समय है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे राज्य केंद्र से। 6:02 पर हम पेश करेंगे ग्रामीणों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी। 6:30 पर कार्यक्रम जननी होगा। जननी कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को संबोधित यह कार्यक्रम आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी महिलाएं अपने बच्चों को मोबाइल से रखे दूर, बेटियों की सुरक्षा आवश्यक। और इसी कार्यक्रम में आप वार्ता भी सुनेंगे। विषय होगा छुआछूत सामाजिक अभिशाप और वार्ताकार होंगी अनिता शुक्ला। 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने रांची केंद्र के प्रसारण में और 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 का समय होगा कार्यक्रम जिले में आजकल का। 7:15 पर गीत गजलों का कार्यक्रम आप सुनेंगे स्वरांजलि। लोकगीतों का कार्यक्रम महुआ आप सुन सकेंगे 7:45 पर। रात्रि 8:00 हम पेश करेंगे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 8:30 पर गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम है गीत संगीत। गीत संगीत में आज आप सुनेंगे शार्दुल सिकंदर की आवाज में गैर फिल्मी गीत। रात्रि 8:45 पर हम शामिल होंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में और सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर उर्दू में समाचार। 9:30 का समय होगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रमों का। विविध भारती का प्रसारण आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 हम पुनः उपस्थित होंगे अपने डाल्टनगंज केंद्र पर और आपके लिए पेश करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से पेश किए जाएंगे और हमारी आज की सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। तो ये थी हमारी अभी की सभा में पेश होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। कृपया प्रतीक्षा करें।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का विक्रम का प्यार भरा नमस्कार आप सभी श्रोताओं को और आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे युवाओं में नशे की लत पर। इस विषय पर युवा हमारे देश की रीढ़ होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। पर आज का युवा नशे की गिरफ्त में उठ ही नहीं पा रहा है। शराब सिगरेट और अन्य प्रकार की नशे की सामग्री का इस्तेमाल कर मोबाइल सिंथेटिक ड्रग्स नशा का कई कई रूप में युवाओं को खोखला कर रहा है। UNODC की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 35 वर्ष के लगभग 2.1 करोड़ लोग किसी न किसी नशे के आदि हैं। नशे के मुख्य लक्षण जो होते हैं वो इस प्रकार हैं, हम आपको बताएंगे एक एक करके। पहला, संगति का प्रभाव। संगति के प्रभाव से नशे में पड़ता है। अगर किसी नशे करने वाले व्यक्ति के संपर्क में अगर बच्चा आपका आता है या कोई भी युवा व्यक्ति आता है तो उससे नशे की आदत होती है। जैसी संगति वैसा रंग। दोस्तों के दबाव में आकर पहली बार सिगरेट या शराब पीना, बियर पीना फैशन लोगों को लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है तनाव और बेरोजगारी। पढ़ाई लिखाई का बोझ, नौकरी का न मिलना, घरेलू कलह, युवा समस्या से भागने के लिए नशे को सहारा बनाता है। लेकिन हमारे युवा दोस्तों से हमारी ये अपील है कि नशा किसी भी परेशानी का सोल्यूशन नहीं है। इस परेशानी आपकी अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी नशा करने की वजह से बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। और ऐसा गलतफहमी बिल्कुल ना पालें कि इससे तनाव कम होता है। तनाव कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप खेलकूद में मन लगाएं, संगीत में मन लगाएं, आर्ट में मन लगाएं, सैर सपाटा करें, इन सब चीज़ों में सार्थक कामों में करें, लोगों की मदद करें, समाज सेवा करें। इन चीज़ों से आप अपने मन को, अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, मन को थोड़ा दूसरी ओर ले जा सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से आप नशा करके अपने तनाव को कम नहीं कर सकते। आधुनिक जीवन शैली में लोगों को लगता है कि हम बहुत ही मॉडर्न हो रहे हैं और किसी प्रकार की नशा करने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं और तथाकथित सोसाइटी मेंटेन करने लगते हैं और शराब वगैरह पीने की आदत करने लगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी जो, हम लोगों की जो प्राचीन पद्धति है जीवन शैली की, वो बहुत ही आवश्यक है और वही पद्धति सही है। हम सबों को अपने स्वास्थ्य पर, ख़ास तौर से युवाओं को अपने स्वास्थ्य पर खासा ध्यान देना चाहिए। आप जितने स्वस्थ होंगे, कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तभी आप अपने भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं। कई बार पारिवारिक उपेक्षा की वजह से भी युवा नशे के गिरफ्त में आता है, लेकिन उन सभी चीज़ों पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका परिवार आपके भले के लिए अगर आपको कुछ कहता भी है तो आपके भले के लिए कहता है। इसके सकारात्मक पहलू पर आप ध्यान दें, नकारात्मक पहलू की ओर सोच आप ना करें। और नशे की लत लगने से कई दुष्परिणाम होते हैं, जैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक पतन होता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आँच आती है, आर्थिक रूप से आप काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है और देश की क्षति तो होती ही है। इसका संविधान है, इस अगर कोई व्यक्ति नशे के गिरफ्त में आ गया है तो हम सबों को मिलकर उसे नशे से बाहर निकालना चाहिए। और इसमें काफ़ी भूमिका होती है परिवार की, इसमें शिक्षा और जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। और कानूनी रूप से तो हमारे यहाँ प्रावधान है ही, अगर नशा कर का सामग्री बेचने वाले पर कानून NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, ड्रग तस्करों पर उम्र कैद की सज़ा है, स्कूलों में 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचना अपराध है, पुलिस को इसको सख्ती से लागू करना होगा, बहुत सारे पुनर्वास केंद्र बने हुए हैं जिसमें नशे में गिरफ्त लोगों को उस पुनर्वास केंद्र में लाकर और उनको नशा छुड़ाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जिनसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि व्यक्ति अगर किसी नशे में है तो उस नशे से, नशे के शिकार होने से बच सकता है, उससे बाहर आ सकता है और फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। अब आइए हम कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए पेश करते हैं एक वार्ता। वार्ता का विषय है पत्रकारिता में अवसर। वार्ताकार हैं अर्पणा

पत्रकारिता का क्षेत्र और रोजगार की संभावनाएं। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचार पत्रों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। डिजिटलीकरण और बदलते परिदृश्य के चलते देश में मीडिया का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। अगर आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप 12वीं के बाद से ही कर सकते हैं। अगर आप स्नातक डिग्री प्राप्त की है तब भी आप आसानी से इस क्षेत्र में भविष्य बना सकते हैं। पत्रकारिता को हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आधुनिक युग में पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्र हैं, जिसमें पहला आर्थिक पत्रकारिता, आर्थिक जगत से जुड़ी खबरें इसके तहत आती हैं। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हुई थी। 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले भारत के पहले अखबार हिक्की गजट ने अपने पत्र के उद्देश्य के विषय में लिखा था, राजनीतिक और व्यापारिक साप्ताहिक सभी पार्टियों के लिए खुला है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं है। आज आर्थिक मुद्दे लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि हिंदी में भी आर्थिक परिशिष्टों का प्रकाशन हो रहा है। दूसरा, संसदीय पत्रकारिता। संसद के दोनों सदनों, प्रादेशिक विधानसभाओं, परिषदों की कार्यवाही की खबर इसके तहत आते हैं। संसदीय पत्रकारिता करते हुए काफ़ी सावधानी बरती जाती है ताकि अवमानना का कोई प्रश्न ना उठे। अधिकतर अनुभव पत्रकारों को ही यह जिम्मेदारी दी जाती है। संसद की पत्रकार दीर्घा में देश के प्रतिष्ठित पत्रकार मौजूद रहते हैं। तीसरा, आपराधिक पत्रकारिता। अपराध जगत से जुड़ी खबरों के बारे में लिखना अपराध पत्रकारिता के तहत आता है। जो पत्रकार पुलिस बीट आपराधिक मामलों को देखता है क्राइम रिपोर्टर कहलाता है। हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाओं की खबर अपराध पत्रकारिता के तहत आती हैं। चौथा, महिला पत्रकारिता। महिलाओं से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन या उनके हित से जुड़ी कोई खबर महिला पत्रकारिता है। आज नारी जगत से संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबारों में भी उनके लिए अलग से परिशिष्ट दिए जाते हैं, लेकिन अखबार में यह समय काटने या मनोरंजन का साधन ही बनकर रह जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार, फैशन, घर सजाने, पतियों को खुश रखने की कला आदि पर ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन इन सब के अलावा विज्ञान, खेल, राजनीतिक साहित्य आदि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनसे संबंधित कुप्रथाओं, उनके शोषण, उत्पीड़न आदि खबर रखना ही सही मायने में महिला पत्रकारिता है। पांचवा, बाल पत्रकारिता। बच्चों से जुड़ी गतिविधियों की पत्रकारिता बाल पत्रकारिता है। उनके जिज्ञासाओं की शांति के लिए रंग बिरंगे मनोरंजक रूप में उन्हीं की

भाषा में पत्र पत्रिकाएं होनी चाहिए। बच्चों के लिए हमेशा से पत्रिकाएं निकलती रही हैं। बालक सुमन, चंपक, सौरभ, नंदन, चंदा मामा, पराग, बाल भारती आदि कई पत्रिकाएं विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निकाली जाती रही हैं। लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में इनके लिए साप्ताहिक, मासिक परिशिष्ट निकाले जाते हैं। स्वास्थ्य पत्रकारिता जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे लोगों के लिए अहम होते हैं। स्वास्थ्य पत्रकारिता केवल मेडिकल की ही नहीं बल्कि मेडिको सोशल पत्रकारिता भी कही जाती है। यह सिर्फ समाचार ही नहीं बल्कि विचार और पुनर्विचार का भी महत्व होता है। स्वास्थ्य पत्रकारिता के लिए तकनीकी और सही जानकारी बहुत जरूरी है। चिकित्सा जगत की कोई भी जानकारी अधूरी या गलत जानकारी जानलेवा या भयावह साबित हो सकती है। सातवां, खेल पत्रकारिता। खेल जगत में लोगों की रुचि रहती है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय स्तर के खेल और खिलाड़ियों की खबर देने के साथ साथ इस क्षेत्र में चल रहे पहल, परिवर्तन और वाद विवाद की खबर देना भी खेल पत्रकारों का काम है। आठवां, विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान मानव जीवन को प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसमें जल, थल और वायु जगत में नित होने नई खोजों, हलचलों की खबरें देना विज्ञान पत्रकारिता के तहत आता है। नौवां, कला संस्कृति और साहित्य पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता का संबंध पुराना है। इसमें कला संस्कृति और साहित्य जगत की सारी खबरें आती हैं। सभी मीडिया इसके लिए स्थान सुनिश्चित रखती हैं। दसवां, ग्राम्य पत्रकारिता। हमारा देश गांव का देश है। गांव की ओर, गांव के लिए खबर हमारे पूरे देश के लिए मायने रखती है। उनकी जरूरतों और विकास से जुड़ी मुद्दे सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। गांवों से जुड़ी खबरों की जरूरत के बावजूद आज बाजारवाद में ग्राम्य पत्रकारिता का स्थान मीडिया में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ग्यारहवां, राजनीतिक पत्रकारिता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पत्रकारिता इसका चौथा स्तंभ है। राजनीतिक से जुड़ी खबरें आम लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। हर मीडिया हाउस में ना सिर्फ राजनीतिक एक अलग बीट होता है बल्कि बड़े प्रकाशनों में तो महत्वपूर्ण दलों के अलग अलग बीट होते हैं। बारहवां, विदेशों की पत्रकारिता। देश की खबरों के साथ साथ विदेशों की खबरें भी हमें पत्रकारिता के माध्यम से ही पता चलता है। इससे व्यापार, आयात निर्यात, राजनीतिक, मनोरंजक आदि हर तरह की खबरें होती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न कोर्स उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज के विभिन्न संस्थान यूनिवर्सिटी कराते हैं। इन संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया एंट्रेंस बेस्ड, मेरिट बेस्ड और डायरेक्ट मोड में होती हैं। पत्रकारिता के प्रमुख संस्थानों की लिस्ट निम्नलिखित हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, बेंगलुरु छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर। इसके अलावा भी देश भर में विभिन्न संस्थान मौजूद हैं जहां से आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस क्षेत्र में फीस अलग अलग कोर्सेज के अनुसार अलग अलग निर्धारित होती हैं। जहां सरकारी संस्थान में कम फीस ली जाती हैं वहीं प्राइवेट संस्थान में सरकारी के मुकाबले अधिक फीस होती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कोर्स करने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 15,000 तक है हो सकती है। अनुभव बढ़ने के साथ ही आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती जाती है। कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न कंपनियों के लिए कॉपी राइटिंग, विज्ञापन राइटिंग, कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर जर्नलिज्म वाले उम्मीदवारों के लिए सरकार की ओर से भी भर्ती निकाली जाती हैं जिसमें भाग लेकर आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं।

0: अंत में यही कहना चाहूँगी कि आजकल युवा वर्ग इस क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और अपने रोजगार के साधन को बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।
1: अब आप सुन रहे हैं युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। अब आइए सुनते हैं, हम लोग बातें करेंगे अगले विषय पर। अगला विषय हमारा है अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार की योजनाएं। तो हमारे अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं, आइए इस विषय पर हम लोग बातचीत करते हैं। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, जिसमें भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी युवाओं के लिए खास योजनाएं चलाता है। 2024-26 में जो चल रही मुख्य योजनाएं हैं, उनमें से प्रमुख है शिक्षा और स्कॉलरशिप से जुड़ी योजनाएं। जैसे एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके लिए कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों को मिलता है ये, और आय सीमा 1 लाख सालाना से कम है, उनके अभिभावकों की आय की सीमा 1 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें फ़ायदा ये होता है कि 600 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का सालाना भुगतान प्लस उसके साथ साथ ट्यूशन फीस दिया जाता है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं scholarship.gov.in पर, इस वेबसाइट पर। दूसरी हमारी प्रमुख योजना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके लिए 11वीं से लेकर PhD तक के छात्र इसमें एलिजिबल हैं। आय सीमा इसमें है 2 लाख रुपया सालाना से कम, अभिभावक की आय सीमा जो है 2 लाख सालाना से कम होनी चाहिए। इसमें फ़ायदा ये होता है कि 7,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपया सालाना एवं जो फीस होती है ट्यूशन फीस किसी भी संस्थान की, वो दी जाती है सरकार के द्वारा। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप एक और योजना है, इसके लिए प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स जैसे BTEC, MBBS, MBA वालों को मिलता है। इसमें आय सीमा 2.5 लाख रुपया सालाना से कम होनी चाहिए। इसमें फ़ायदा ये होता है कि 20,000 रुपये सालाना एवं उसके अतिरिक्त कोर्स फीस 20,000 तक दिया जाता है। नई स्कॉलरशिप जो है वो 60,000 नई स्कॉलरशिप भी अभी स्कीम आ गई है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप अवार्ड भी है, ये MANF कहते हैं, ये MPhil वाले छात्रों के लिए है। इसमें फ़ायदा 31,000 से 35,000 रुपया महीना JRF, SRF, HRA के लिए दिया जाता है। 2022 से नई फेलोशिप बंद है, ये जो जिसकी बात की है ये 2022 से बंद है, पर पहले से जो चल रही है वो जारी है। विदेश पढ़ाई करने के लिए भी है पढ़ो परदेश योजना, इसमें ब्याज सब्सिडी योजना है। विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन दिया जाता है और फ़ायदा इसमें होता है कि मोरेटोरियम पीरियड का पूरा ब्याज सरकार देगी। स्किल और रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी हैं, सीखो और कमाओ, इसके लिए 14 से 45 साल के युवा 5वीं पास, इनको 3 से 6 महीने की फ्री स्किल ट्रेनिंग एवं 1500 से लेकर 2500 तक स्टाइपेंड दिया जाता है। ट्रेड इसमें है मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, AI डाटा एंट्री, और इसके साथ साथ 2024 से इसे PM विकास योजना में मर्ज कर दिया गया है। उस्ताद योजना ये भी है, अपग्रेडिंग स्किल एंड ट्रेनिंग के जरिए इसमें दिया जाता है। इसके लिए पारंपरिक कारीगर युवा जरदोजी, चिकनकारी, मधुबनी पेंटिंग इत्यादि करते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि गुरु से ट्रेनिंग, हुनर हाट में स्टॉल, बाजार लिंकेज और मुद्रा लोन, ये सब चीज़ें दी जाती है। नई मंजिल योजना, इसके लिए 17 साल से 35 साल के मदरसा स्कूल ड्रॉप आउट युवा के लिए है। इनमें फ़ायदा ये है कि ब्रिज कोर्स से 8वीं से 10वीं पास कराना, स्किल ट्रेनिंग एवं 3 महीना प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, जिसमें प्रमुख है प्रधानमंत्री विरासत का सर्व का संवर्धन, PM विकास 2023 में 5 पुरानी योजनाएँ मर्ज हुई हैं। लड़कियों के लिए योजनाएँ हैं नई रोशनी योजना, लीडरशिप डेवलपमेंट, इसके लिए 18 से 65 साल के अल्पसंख्यक महिलाएं, फायदा है 6 दिन की ट्रेनिंग, कानून, बैंकिंग, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में। और अब PM विकास योजना का ये हिस्सा है बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, इसके लिए 9वीं से लेकर 12वीं की लड़कियां 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, 5,000 से 6,000 रुपये सालाना इसमें दिया जाता है। इसमें सारे लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको ज़रूरी है आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति, अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मार्कशीट और फोटो। इसकी अप्लाई आप कर सकते हैं scholarship.gov.in पर, इस वेबसाइट पर। और लोन जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय

से ये योजना है। तो इस योजना में का फ़ायदा आप सब उठाएं और आगे बढ़ें। भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी युवाओं के लिए ख़ास तौर से है, तो इसका फ़ायदा लोग देश भर में ले भी रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं उससे मेरी अपील है कि आप भी लें और आगे बढ़ें सरकार की पॉलिसी के साथ साथ। तो हम लोग इन विषयों पर बात की, अब आइए आज के कार्यक्रम में हम चलते चलते आपके लिए पेश करते हैं एक गीत। सुनते रहिए इस गीत को और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम युवाणी से इस गीत को सुनते रहिए और इस गीत के साथ ही इस कार्यक्रम युवाणी से अपने दोस्त विक्रम को इजाज़त।

लैला मजनू, शीरी फरहा, ही रांझा।

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहाद रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।
1: तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आधुनिक ढांचागत संरचना के विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर है और राज्यों के विकास पर बल दिया जा रहा है। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही झारखंड में असर दिखने लगा है। श्री दुबे एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहते नजर आए कि पाकुड़ में वर्षों से चल रहे अवैध टोकन सिस्टम और खनिज कारोबार पर लगाम लगने से ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को राहत मिली है। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज अपराध गोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान श्री सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों को विशेष रूप से साइबर अपराध पर नियंत्रण, महिला और बाल विकास, सुरक्षा के प्रति सजग रहकर कार्य करने का निर्देश दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीन के शंघाई में आयोजित दूसरे चरण में आज झारखंड की दीपिका कुमारी और अंकिता भकत तथा कुमकुम मोहद की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ कर दिया और इसी के साथ उन्हें हराया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 मई तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और किसान भाइयों, हमेशा की तरह आपके साथ हैं आज आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: आपको भी हमारा नमस्कार संतोष जी, और सभी किसान भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार।
0: और अब हम लोग बातें करते हैं खेती बाड़ी की। आज कार्यक्रम खेती बाड़ी में सर्वप्रथम हम लोग बातें करते हैं ड्रिप सिंचाई की, फव्वारा सिंचाई पद्धति की, चूंकि अब हमारे किसान भाई गर्मी को झेलेंगे,
1: क्योंकि जलस्तर नीचे जाना प्रारंभ हो चुका है, गर्मी भी अपने रंग में आने लगी है। तो उस स्थिति में चूंकि हमारा जो पलामू प्रमंडल है खासकर, और इसमें यहाँ पानी की बहुत किल्लत हो जाती है, तो जब यहाँ पानी पीने की जब समस्या होती है तो आप समझ सकते हैं कि जलस्तर तो नीचे जाता ही है, तो सिंचाई करना किसान भाइयों के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है। तो जो हमारी जो पद्धति है, जो ईजाद की गई कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, ड्रिप कहें या फवारा सिंचाई पद्धति, यह जो ड्रिप सिंचाई जो सिंचाई है, यह उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। यह विधि मृदा के प्रकार, खेत के ढाल, जल के स्रोत और किसान की दक्षता के अनुसार अधिकतर फसलों के लिए अपनाई जा सकती है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है संतोष जी, वो यही है, ड्रिप विधि का सिंचाई दक्षता लगभग 80-90% होती है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की उच्च गुणवत्ता, रसायन व उर्वरकों का दक्ष उपयोग, जल के विलक्षण एवं अप्रवाह में कमी, खरपतवारों में कमी और जल की बचत सुनिश्चित की जा सकती है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, और सबसे बड़ी बात हम आपको यह भी बताते चलें कि सिंचाई की इस विधि का उपयोग पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। सीमित जल संसाधनों और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जल की आवश्यकता और पर्यावरण की समस्या को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक निसंदेह बहुत कारगर सिद्ध होगी। और जिन क्षेत्रों में भूमि को समतल करना महंगा या कठिन हो चुका है, जो असंभव मान लीजिए, उन क्षेत्रों में व्यावसायिक फसलों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक सर्वाधिक उपयुक्त भी है।
1: ड्रिप तंत्र एक अधिक आवृत्ति वाला ऐसा सिंचाई यंत्र है जिसमें जल को पौधों के मूल क्षेत्र के आसपास दिया जाता है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा पौधे को आवश्यकतानुसार जल दिया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा 30-40% तक उर्वरकों की भी बचत की जा सकती है। 70% तक जल की बचत के साथ उपज में 100% तक वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त खरपतवारों में काफ़ी कमी, कीट व्याधियों के प्रकोप में कमी, कम ऊर्जा की खपत और उत्पाद की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो।
0: किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई तंत्र एक उत्सर्जन युक्त सहित पाइपों का एक जाल होता है। ड्रिप तंत्र में मुख्य, उपमुख्य तथा लेटरल पाइप होते हैं, और लेटरल छोटे प्लास्टिक पाइप होते हैं जिनके साथ ड्रिपर लगे होते हैं। लेटरल पाइप को एक स्वीकार्य स्तर तक समान जल वितरण के लिए बिछाया जाता है। उपमुख्य पाइप एक नियंत्रण तंत्र की भांति कार्य करता है और जल के दबाव को समायोजित करता है किसान भाइयों, जिससे कि प्रत्येक लेटरल में जल का आवश्यक प्रवाह हो सके। तो इस प्रकार तो अगर

0: देखा जाए तो बहुत फायदे हमें नजर आते हैं आपको ड्रिप सिंचाई में, जिसकी आवश्यकता आज हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है किसान भाइयों, और अब है कि हम इसका अच्छी तरह से उपयोग करें।
1: देखिए, ड्रिप जो सिंचाई है संतोष जी, यह कृषि वैज्ञानिकों का एक तरह से हम कहेंगे किसानों के लिए जो इजाद की गई है, एक वरदान से कम नहीं है। और इसके लाभ भी कई सारे हैं, यही नहीं कि सिर्फ पानी की ही बचत करते, इसके लाभ भी कई सारे हैं। जैसे उत्पादकता और गुणवत्ता की अगर बात हम लोग करते हैं, तो जो टपक सिंचाई है, जो ड्रिप सिंचाई है, इसमें पेड़ पौधों को प्रतिदिन जरूरी मात्रा में पानी मिलता है। तो सिंचाई कर रहे थे, एक बार आपने सिंचाई कर दी, पूरे खेत को पटा दिया, उसके बाद फिर सिंचाई मिल नहीं पाती है। तो इसमें है कि आपको प्रतिदिन आप इसमें जब जब जिस फसल को जितनी आवश्यकता पानी की हो, उतनी आवश्यकता एकदम जिसे नहीं होता नाप तोल करके मिल जाना, अपना आहार जितना आवश्यकता है, जितनी भी उसको जरूरत है, उतनी आप सिंचाई उसको दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसमें जिस तरह से उसको चाहिए उसी तरह से आप उसको देते हैं
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है। और इसके जिस इस पद्धति में है कि फसलों की बढ़ोतरी व उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। टपक सिंचाई से फल, सब्जी और अन्य फसलों के उत्पादन में 20% से लेकर 50% तक बढ़ोतरी संभव है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, टपक सिंचाई द्वारा 30-60% तक सिंचाई पानी की आप बचत कर सकते हैं। उबड़ खाबड़ क्षारयुक्त बंजर जमीन, शुष्क खेती वाली और पानी के कम रिसाव वाली जमीन, और अल्प वर्षा की क्षारयुक्त जमीन और समुद्र तटीय जमीन की खेती के लिए ये उपयोग में लाई जा सकती है।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जो वैसी जमीन जिसमें सिंचाई करना भी कठिन है, वैसी भी जमीन में आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। और इसमें जब बात हम लोग करें रासायनिक खाद के बारे में, तो फर्टिगेशन से पोषक तत्व तो बराबर मात्रा में सीधे पौधों की जड़ों में पहुँचाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पोषक तत्वों का उपयुक्त इस्तेमाल कर पाते हैं तथा प्रयोग किए गए उर्वरकों में होने वाले विभिन्न नुकसान कम होते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। इस पद्धति के द्वारा 30-45% तक की रासायनिक खाद की बचत भी की जाती है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, टपक सिंचाई में पानी सीधे फसल की जड़ों में दिया जाता है। आसपास की जमीन सूखी रहने से अनावश्यक खरपतवार से भी आप बच जाते हैं, और इससे जमीन के सभी पौष्टिक तत्व केवल फसल को मिलते हैं।
1: सबसे बड़ी बात यही है इस में कि आपको सीधे जड़ को पानी मिलता है, आसपास को पानी नहीं मिलता है, इसलिए खरपतवार नहीं के बराबर हो पाते हैं। और फसल में कीट और रोग का जो प्रभाव होता है इस सिंचाई पद्धति के उपयोग के कारण, जड़ के क्षेत्र को छोड़कर बाकी भाग सूखा रहने से निराई गुड़ाई खुदाई कटाई आदि का काम भी बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं, जिससे मजदूरी समय और पैसे की भी बचत होती है।
0: जी किसान भाइयों, प्रतिदिन फसल को पानी देने से पहले पंप चालू करके 5 मिनट तक बैकवॉश करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों, इसलिए कि संयंत्र को आप पटवन से पहले उसे आप जरूर चेक कर लें।
1: उससे क्या होता है कि सामान्य प्रवाह जो है वह उल्टी दिशा में ऊंचे दबाव से पानी छोड़े जाने की यह पद्धति है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि पहले दिन सैंड फिल्टर में कहीं किसी तरह की गंदगी अगर जमा होती है तो वह पानी के साथ बाहर आ जाती है और उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। और फिल्टर की सफाई होने के बाद हेडर असेंबली के बाईपास वाल्व की सहायता से उचित दाब नियंत्रित किया जाता है और उपयुक्त दबाव पर चलने वाले संयंत्र से पानी सभी जगह समान मात्रा में मिलता है। इसकी यही खासियत है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई पद्धति चालू करने के बाद सारे खेत में चक्कर लगाकर यह अच्छी तरह आप देख लें कि सभी ड्रिपर्स चालू हैं अथवा नहीं, और पानी का दबाव ठीक है कि नहीं, जमीन में नमी का प्रमाण अनुकूल है कि नहीं, किसी लेटरल में से पानी टपक तो नहीं रहा है। इन छोटी छोटी तमाम बातों की जांच इसलिए जरूरी है कि समस्या का निवारण तुरंत संभव हो सके।
1: और जो टपक संयंत्र के सभी ट्रिपर्स को पानी ठीक तरह से गिरता है या नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जमीन का गीलापन सभी जगह एक जैसा है नहीं, यह भी देखना चाहिए। सही जगह लगा है कि नहीं, यह भी देखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही साथ जो लेटरल इनलाइन का अंतिम छोर खोलकर पानी को 1-2 मिनट यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो यह जो हमारी जो पद्धति है, जो फवारा तकनीक जिसे कहते हैं हम लोग, या टपक सिंचाई कहते हैं, इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं, कह सकते हैं। तो किसानों के लिए

0: पानी के बचत के साथ साथ उनके उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और उनके जो उत्पाद हैं वह गुणवत्तापूर्ण होते हैं, यही इसकी खासियत है।
1: जी, तो किसान भाइयों, ये तो हुई बातें ड्रिप सिंचाई की, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की। और अब
2: किसान भाइयों, जैविक खेती सुदृढ़ खेती है। जैविक खेती अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, भूमि में जल संचयन की क्षमता को बढ़ाते हैं, उसके साथ हम गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन करते हैं। जैविक खाद का हमें समुचित उपयोग किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार हमें देख रेख करनी चाहिए, किस प्रकार ध्यान देने चाहिए, इन तमाम बातों पर आज जानकारी साझा करेंगे। अभिषेक पटेल, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: सर्वप्रथम तो ये बताया जाए कि जैविक खाद क्या है।
3: जैविक खाद जो कि हमारा गोबर का फाड़ा हुआ बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए सर्वप्रथम इसको हम बनाते कैसे हैं? इसको हम बता रहे हैं कि इसका एक पिट तैयार करना रहता है, 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, अच्छा। 1 मीटर गहरा।
2: अच्छा।
3: इसका पिट या तो आप प्लास्टिक बना सकते हैं या तो सीमेंटेड बना सकते हैं, उसको बना लीजिए। फिर इसमें आप एक लेयर, पतला लेयर, उसमें लगभग 3 से 4 mm मिट्टी डाल दीजिए। फिर उसके बाद फड़ा हुआ गोबर उसमें डालिए। गोबर डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि लाए डायरेक्ट डाल दीजिए, उसको लाइए एक जगह अलग से रखिए, 1-2 रोज के बाद उसको उसमें भी गड्ढे में डालिए। फिर उसके बाद आता है कछुआ, ट्राइकोडर्मा, तो उसको उसमें एक गड्ढे में लगभग 1 से 1.5 kg उसको कछुआ के डाला जाता है। उसके बाद आपका फड़ा हुआ किचन का सामान हुआ, सब्जी फल फूल या तो पुआल हुआ, ये सब कुछ डालिए, फिर गोबर डालिए। इसी तरीके तह बाय तह करते हुए गड्ढे को पूरी तरीके से भर दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दीजिए, या तो भीगा हुआ बोरा या जूट का कुछ भी हो उसे ढक दीजिए।
2: अच्छा।
3: तो 2 से 3 मंथ के बाद केचुआ जो भी होता है उसके अंदर, वो धीरे धीरे खाते पचाते
2: अच्छा
3: एकदम इसको बर्मी कंपोस्ट जैसा बना देता है, जैसा कि चाय के पत्ती होता है वैसा भुरभुरा हो जाता है। तो उसके बाद आप छलनी से छान लीजिए, आपको तैयार हो गया है।
2: अच्छा।
3: जैविक हमारा खाद जो होता है ये तैयार होता है इस तरीके।
2: फिर इसका इस्तेमाल करते हैं।
3: हाँ, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप खेत में, हर 3 महीने में तैयार हो जाता है।
2: अच्छा। अच्छा, समुचित उपयोग की बात जहाँ तक आती है, किस प्रकार हमारे किसान भाइयों को इसका उपयोग करना चाहिए?
3: इसका उपयोग खेती में बहुत ज्यादा हर एक तरफ किया जा सकता है, जैसे आप फसल लगा रहे हैं उसमें कर सकते हैं, बागवानी में सबसे ज्यादा इसका उपयोग बागवानी नर्सरी में सबसे ज्यादा होता है।
2: अच्छा।
3: इसका उपयोग नर्सरी में, किसी भी नर्सरी को उसको अगर नर्सरी लगा रहे हैं उसको जिंदा रखना चाह रहे हैं, जैसे टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, मिर्चा हुआ, ये सब नर्सरी के जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें इसका आता है बर्मी कंपोस्ट का।
2: अच्छा।
3: इसका अगर जितना मात्रा रहता है उतना अच्छा इसका जर्मिनेशन होता है, प्लस जब इसको लगाने के लिए कबारते हैं तो वो आसानी से कवर भी जाता है, नहीं तो मिट्टी रहता है मिट्टी में कवरता नहीं, जब टूट जाता है कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है।
2: अच्छा, ये भी एक बात है।
3: ये भी।
2: और क्या क्या लाभ हमारे जैविक खेती से हमारे किसान भाई प्राप्त करते हैं?
3: जैविक खेती से लाभ किसान भाई ये, इसका तो एक बार जो ऐसे गोबर खाद हुआ या तो ये बर्मी कंपोस्ट हुआ या तो करंज खली हुई, ये सब जो जितने भी जैविक है सभी का, जैसे अगर फील्ड में आप डाल रहे हैं तो इसका आप 1 साल डाल रहे हैं 2 से 3 साल इसका फायदा करते हैं, जबकि आप DAP यूरिया ये सब उपयोग करते हैं तो जब फसल है तभी काम करेगा, ये होता है। इसके साथ साथ इसके डालने से जो जल की धारण क्षमता होती है वो वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जो
2: मैंने खेत में आपका नमी बना रहेगा
3: और जो कि धीरे धीरे देखा जाता है कि जमीन ज्यादातर ऊपर होते जा रहे हैं।
2: हाँ।
3: बहुत ज्यादा समस्या इसकी आ रही है, इसमें भी इसका काफी ज्यादा ये रोकथाम करता है।
2: अच्छा,
3: जैविक खेती से तो इससे किसान को फायदा है। अगर किसान डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे तो उनको थोड़ा बहुत घाटा सहना पड़ेगा, इसको धीरे धीरे करके पूर्णतः लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले ही बार में पूरी तरीके से हम बर्मी कंपोस्ट या इस पे जैविक खेती पर आधारित हो जाएं। पहले 75% जैविक, 25% इनऑर्गेनिक, फिर 50, फिर धीरे धीरे घटाते जाइए, इनऑर्गेनिक को हटाते जाइए।
2: अच्छा।
3: आ जाइए टोटली ऑर्गेनिक पे।
2: ऐसे होता है।
3: हाँ, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट वो करेंगे तो आपका उपज जो है काफी ज्यादा कम हो जाएगा पहली ही बार में अगर करेंगे। इसको करने के लिए कम से कम 2 या 3 साल में करेंगे तो आसानी से आपका उपज भी ज्यादा नहीं घटेगा, जिससे कि आपको आर्थिक जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। नहीं तो आप पहली ही बार में अप्लाई करेंगे तो उसमें आर्थिक नुकसान होने की ज्यादा संभावना है।
2: अच्छा, जैसे

0: ये तो अनाज वाली फसलों में लोग अधिक रासायनिक खाद उपयोग कर देते हैं, तो क्या कहाँ तक ये उचित है? क्या अनाज में जैविक खेती से ही अनाज की खेती की जा सकती?
1: अनाज में जैविक खेती किया जा सकता है। जो आजकल विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, ये सब इसी इनऑर्गेनिक का ही आ रहे हैं, नए नए बीमारी। जैविक खेती में क्या रहता, पहले के जो पुराने जमाने में लोग रहते थे, 70, 80, 90 साल, 100 साल तक जीते थे, पर आजकल 50 साल, 60 साल में पूछना मुश्किल पड़ जा रहा है। तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जिसका कोई निदान नहीं है। हमारे किसान कृषि वैज्ञानिक जो बताते हैं कि ये दवा है, इसको इसका जो कार्य क्षमता है 10 से 15 दिन में करने का, पर जो हमारे किसान भाई है वो लेके जाते हैं, भिंडी या बैगन हुआ, ये सब में 8 डालें, फिर कल फसल तोड़े, फिर परसों डालें, और कंटिन्यूअस डालते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इसको नहीं खा रहे हैं, वो तो कोई दूसरा खा रहा है, जबकि उसका बाया प्रोडक्ट कुछ भी बन के जो आ रहा है वो तो स्वयं भी खा रहे हो ना। तो उसमें एक बार खेत में पड़ गया तो उसका एक लेयर जो बनता है वो तो लेयर पड़ा ही रह गया। आप उसमें अगले साल धान या गेहूं लगाएंगे तो उसका तो उसमें जाएगा ही असर, तो उसको तो आप खाएं। तो इसी की वजह से है कि जो तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, जिसका अभी इलाज भी बहुत नहीं हो पा रहा है, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जमीन धीरे धीरे काफी ज्यादा ऊफर होती जा रही है, इसका सीधा प्रभाव जमीन को ज्यादातर ऊफर कर देता है। एक लेयर बन जाता है, लेयर जल्दी टूटता नहीं
0: कठोर
1: तो
0: हो जाता है।
1: कठोर हो जाता है।
0: अच्छा, तो उस स्थिति में फिर आप सिंचाई वगैरह में भी
1: हाँ,
0: दिक्कत नहीं
1: सिंचाई में
0: होगी?
1: दिक्कत होगा, फसल लगाएंगे वो उसका जर्मिनेशन में दिक्कत होता है, वो सही जर्मिन उपज में दिक्कत होता है। तब ये होता है कि किसान जनरली जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि खाद हम कम दिए हैं, वो खाद के चक्कर में और ज़्यादा खाद देते हैं, जबकि उसे कोई वो नहीं है, उसमें कमी कुछ है, लोग कुछ दे रहे हैं। किसान जैसे अपना आदमी अपना जैसे शरीर का जांच कराते हैं, वैसे किसान भाई तो पहले तो अपना मिट्टी की जांच कराएं, मिट्टी में कौन सी चीज़ की क्या कमी है उसको देखते हुए, अगर इनऑर्गेनिक में दे रहे हैं तो उसमें देखें क्या उसमें कमी है। पता चल रहा है कि उसमें कमी है जिंक की, आप उसको DAP यूरिया दे रहे हैं तो आपको लगी है प्यास, आप उसको खाना खिला रहे हैं तो वो कहाँ तक खाए। तो इसी प्रकार प्लांट भी है, प्लांट को जरूरत है माइक्रो न्यूट्रिएंट के, आप दे रहे हैं मेजर न्यूट्रिएंट, तो उसमें वो उसको प्रॉब्लम है। अगर मिट्टी का आप जांच करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारे फील्ड में क्या चीज़ की कमी है, तो आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपका फसल जो है अच्छा होगा, उपज भी अच्छा मिलेगा,
0: गुणवत्तापूर्ण भी
1: हाँ
0: होगा,
1: गुणवत्तापूर्ण भी रहेगा।
0: मतलब कोई हानि उससे नहीं
1: हाँ
0: पहुंचेगी।
1: हाँ
0: इसलिए
1: आप
0: मिट्टी जांच भी अति
1: हाँ
0: आवश्यक हो जाता है
1: बहुत
0: समय समय
1: जरूरी
0: पर।
1: है, समय समय पर कराना चाहिए मिट्टी की जांच,
0: लगभग कितने अंतराल पर मिट्टी जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है?
1: लगभग 2 से 3 साल में
0: एक
1: कराते
0: बार
1: रहिए।
0: करवाना
1: हाँ, करवा
0: चाहिए।
1: ही लेना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्या कमी है, अनुसार आप अगर डालेंगे खाद या कुछ भी तो आपको बेनिफिट मिलेगा।
0: जी, आप थे अभिषेक पटेल जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और जैविक खेती से संबंधित, खाद का समुचित उपयोग से संबंधित आपने जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद।
2: आइए अब हम लोग बात करते हैं मिट्टी की जांच क्यों। हम लोग बार बार किसान भाइयों को जोर देते
0: जी
2: हैं
0: जी
2: कि,
0: बराबर सलाह देते हैं।
2: और सलाह भी देते रहते हैं कि आप हमेशा, आपने चूंकि ऐसा अक्सर देखा, जो हमारे पढ़े लिखे किसान भाई वह तो मिट्टी की जांच करा लेते हैं, लेकिन जो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे किसान भाई जो खेती करते आ रहे हैं, आज भी वो मिट्टी की जांच कराना उचित नहीं मानते। वो समझते हैं कि पिछले वर्ष जो हमने हुआ था, इस बार इतना पैदा हुआ था, इस वर्ष कुछ कम हुआ, अगले साल थोड़ा सा बढ़ा तो अच्छा है, तो यह ख्याल दिल से निकाल दें। आप अपने खेतों से और भी बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी का अभाव है। आपको जब तक से यह पता नहीं होगा कि आपकी भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है, तब तक आप बेहतर पैदावार कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए बेहतर पैदावार, जो क्योंकि आप मेहनत करते हैं, आपका श्रम लगता है, आपकी पूंजी लगती है, आपका समय लगता है, तो उसका लाभ आप लें, इसके लिए आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम मिट्टी की जांच कराएं। पोषक तत्वों का अधिकांश भाग पौधे मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, और जब इन तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे खाद एवं उर्वरक डालकर पूरा करते हैं। सभी मिट्टियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, उनकी उर्वरता का अपना स्तर होता है तथा उनके गुण दोष अलग होते हैं, इसलिए फसल के साथ मिट्टी के अनुसार भी उर्वरक का उपयोग और उनकी मात्रा बदल सकती है। इसलिए किसान भाई, फसल लेने से पहले मिट्टी की जांच आवश्यक है।
0: किसान भाइयों, मिट्टी की जांच दो समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है। प्रथम तो ये है कि फसल एवं वृक्षों के खाद की सिफारिश को देखते हुए, दूसरा आम्लिक या क्षारीय मिट्टी में सुधार के लिए। और मिट्टी की जांच से यह पता चल जाता है कि भूमि में कौन सा तत्व उचित अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है। यदि आप बिना मिट्टी जांच कराए खाद डालते हैं तो संभव है कि खेत में आवश्यकता से अधिक या कम खाद डाल दी जाए, और आवश्यकता से कम खाद डालने पर कम उपज मिलेगी तथा अधिक खाद डालने पर खाद का गलत उपयोग होगा और पैसा भी बेकार जाएगा। यह भी हो सकता है कि आप उन पोषक तत्वों को कम मात्रा में दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता अधिक है, और ऐसे तत्वों जिनकी आवश्यकता कम है तो आप अधिक मात्रा में उसे उपयोग कर दे रहे हैं। तो खाद व्यवहार के संतुलित एवं उचित मात्रा क्या हो इसकी जानकारी भी नहीं होने से आपकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आ जाएगी,
2: और इसके सही जानकारी के लिए मिट्टी जांच जरूरी है। फलदार पौधों की जड़ मिट्टी में बहुत नीचे तक जाती है, यह जानने के लिए जिस खेत में आप फल के पेड़ लगाना चाहते हैं उसमें पेड़ों की जड़ों को बढ़ने एवं पूर्ण रूप से भोजन पहुंचाने की क्षमता है या नहीं, मिट्टी की जांच जरूरी है।
0: और कार्यक्रम में हम बातें करते हैं, बकरी पालन बहुत उत्तम माध्यम है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। प्रदीप जी,
2: ग्रामीणों का ये ATM भी है।
0: हाँ,
2: इसलिए बकरी पालन जो व्यवसाय है इसको अपना करके किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके लिए कम पूंजी में कम जगह में इसे आसानी से किया जा सकता है। पहले शुरुआत छोटे पैमाने पर करें और जब आप इसकी खामियों को अच्छी तरह जान जाएं उसके बाद आप इसे बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, काफ़ी व्यावसायिक स्तर पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा किसान भी हैं हमारे जो प्रारंभ में स्टार्ट किए थे, एक दो बकरी से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज बहुत अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है और बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अपने मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी तकदीर बदली है।
0: आपकी खेती अगर टूट रही है, आप बहुत बुरी हालत में हैं, तो उस समय भी बकरियां काम दे जाती हैं। बकरियों के लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती है,
2: क्योंकि छोटे बकरी भी आसानी से बाजार में उपलब्ध होते हैं, आसपास गांव घर में भी उपलब्ध होते हैं, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बकरी खरीदें, बहुत ज़्यादा पैसा लगाएं, आप 1,000-2,000 से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
0: निश्चित,
2: तो उसके लिए घर का जूठन भी उनको काम आएगा। हाँ। आपके खेत खलिहानों में वो चर करके भी बड़ी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा अगर देने वाली अगर कोई है तो वो बकरी ही है।
0: बिल्कुल सही।
2: और एक बकरी अपने जीवन काल में कोई, हालांकि उसकी निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि 8-10 बार वह
0: गाभिन होती है,
2: गर्भवती होती है, तो 8-10 बार वो बच्चों को जन्म देती है। और खासकर जो हमारा लोकल यहाँ का जो ब्रीड है, जो काफी मशहूर भी है, ब्लैक बंगाल की बकरी कम से कम 10-12 ब्यांत तक देती है बच्चे। और हर बार में देखिएगा, शुरू में एक बार में एक बच्चा, कभी कभी दो दो बच्चे, कभी कभी तीन तीन बच्चे, यहाँ तक कि 4-4 बच्चे एक एक बार में देती है। लेकिन दो का तो औसत अधिकतर बना रहा है।
0: अधिकतर बना है, मतलब एक बार में दो बच्चा तो देना है।
2: एक बार में दो बच्चा देना है, और इन लोगों का जो कार्यकाल होता है 6.5 महीने का होता है। ऐसे हम लोग 1 साल बोलते हैं, लेकिन अगर आप टाइम देखिएगा तो 13 महीने का समय लगता है। तो 13 महीने में आप 2 बार, 1 साल 1 महीने में आप 2 बार इसे बच्चे प्राप्त करते हैं। इसमें होता क्या है कि मृत्यु दर जो है बकरी पालन में, छोटे बच्चों में मृत्यु दर अधिक। कारण है कि जो ब्लैक बंगाल हमारी बकरी है उसमें दूध की मात्रा जो है, दूध जो देने की जो क्षमता है वो अन्य बकरियों से कम होती है। तो उसके लिए जो है कि जब आपका बच्चा छोटा है तो उस समय आपको 1 महीने जो है, जब तक से वो अपने ये पर चरने फिरने के काबिल नहीं बनता तब तक 1 महीने आपको देख रेख की आवश्यकता होती है। अगर उसको 15 दिन तक अगर आप माँ के दूध से अगर उसका पेट नहीं भर रहा है तो आप गाय का दूध भी उसके पिला के पाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं।
0: और कम पूंजी में ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी शुरुआत की जा सकती है किसान भाइयों। और रही बात रोग व्याधियों की, तो उसके लिए हमारे किसान भाई अपने पशु प्रखंड पदाधिकारी जो हैं पशुपालन उनसे संपर्क कर सकते हैं।
2: और गांव में जो पहले से बकरी पाल रहे हैं तो उनको खुद पता होता है कि बकरी में कौन सी बीमारी हो रही है, तो उसका उपचार वो लोग करते हैं।
0: किसान भाइयों, इसी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार
2: और प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार।
1: आपको भी संतोष कुमार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रदीप जी।
0: अपने पर्यावरण को हमको बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, तो जितना भी आप केमिकल चीजों से दूर रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे
1: जी।
0: बुजुर्ग हुआ करते थे 100 साल जीते थे, उससे भी अधिक जीते थे, उसके पीछे कारण क्या था? यही कारण था कि वो मिलावट के चीज़ों से परहेज करते थे, शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अभी धीरे धीरे चूंकि आधुनिक दौर आते गया, जमाना बदलते गया, लोगों के रहन सहन खान पान जो दिनचर्या है उसमें भी काफ़ी बदलाव
1: आ चुका,
0: तो इसी का जो दुष्परिणाम है कई तरह की समय से पहले बीमारियां, बच्चों का आँख खराब हो जाना
1: जी,
0: कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आदमी
1: घिरा
0: हुआ है, तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। इसका दोष किसी अन्य को न दें तो ज्यादा बेहतर है।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले
1: जब बात हो रही है प्रकृति की, तो आज जीवामृत की बात हम करेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा आज विषय चुना है कि जब अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवामृत, आपने अच्छा विषय को चुना है। तो यह जो है जीवामृत बनाने की विधि क्या है और उसका उपयोग हमारे किसान भाई कैसे उसे अपने खेतों में करें?
1: जी बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई को हम यह भी बताते चलें कि हरित क्रांति के बाद ही भारतीय खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल करके रख दी है और आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है और खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे किसान भाई हम यह बताते चलें कि अगर हम जीवामृत वगैरह का प्रयोग करते हैं, पारंपरिक रूप से खेती करते हैं, तो हम फसल को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पादित कर सकते हैं और मृदा को भी सुधार सकते हैं।
0: संतोष जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपने बात बताई, इन जो सभी समस्याओं का समाधान के लिए हमारे किसान भाइयों के पास एकमात्र विकल्प है जैविक खेती को बढ़ावा देना, और यह समय की मांग भी है।
1: मांग भी है बिल्कुल।
0: और जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह पौधों की विभिन्न रोगाणुओं से तो सुरक्षा करता ही है और साथ ही साथ जो पौधे स्वस्थ बने रहें इसका भी वह इसमें मदद करता है। जीवामृत दो प्रकार के होते हैं।
1: अच्छा।
0: पहला तरल जीवामृत और दूसरा घन जीवामृत। तरल जो जीवामृत है वह उसकी बनाने की जो विधि है उसके लिए जो है आपको देसी गाय का 10 किलो गोबर और 10 लीटर गोमूत्र, पुराना सड़ा हुआ गुड़ 1 किलोग्राम और किसी भी प्रकार की दाल का 1 किलो बेसन, जैसे मूंग हो, उड़द हो, अरहर हो, चना हो, कोई भी बेसन हो, आप उसका 1 किलो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलोग्राम, जिसे सजीव मिट्टी भी कहते हैं, अगर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी न मिले तो खेत की मिट्टी प्रयोग की जा सकती है जिसमें कीटनाशक न डाले गए हों, इसका बात का भी ध्यान रखना है। और एक जो बड़ा सा पात्र जिसे हम ड्रम कहते हैं, लगभग 200 लीटर
1: जी।
0: सभी को इकट्ठा करके सबसे पहले 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गोमूत्र, 1 किलोग्राम पुराना सड़ा हुआ गुड़, 4 लीटर गन्ने का रस, 1 किलोग्राम किसी भी दाल का बेसन, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी एवं 200 लीटर पानी को एक मिट्टी के मटके या प्लास्टिक के ड्रम में डालकर किसी डंडे की सहायता से इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं, जिससे यह पूरी तरह से आपस में मिल जाए। अब इस मटके या ड्रम को ढककर छांव में रख दें। इस मिश्रण पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए, इसका आप विशेष ख्याल रखें।
1: जी हाँ किसान भाइयों, और अगले दिन इस मिश्रण को फिर से किसी लकड़ी की सहायता से हिलाएं, 6 से 7 दिनों तक इसी कार्य को आप करते रहें, लगभग 7 दिन के बाद जीवामृत उपयोग के लिए बनकर तैयार हो जाता है और यह 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार देशी गाय कि 1 ग्राम गोबर में लगभग 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। जब हम जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर पानी में डालते हैं, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर डालते हैं, तो लगभग 50 लाख करोड़ जीवाणु इस पानी में डालते हैं, और जीवामृत बनते समय हर 20 मिनट में इनकी संख्या दुगुनी हो जाती है। और जीवामृत हम 7 दिन तक किण्वन के लिए रखते हैं तो उनकी संख्या अरबों खरबों में हो जाती है। और जब हम जीवामृत भूमि में पानी के साथ डालते हैं तब भूमि में ये सूक्ष्म जीव अपने कार्य में लग जाते हैं तथा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं।
0: अब हम बात करेंगे तरल जीवामृत को कैसे प्रयोग हम लोग करें।
1: जी,
0: तो तरल जो जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों में किसान भाई आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना। जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं उस खेत के लिए पानी ले जाने वाली नाली के ऊपर ड्रम को रखकर बल्ब की सहायता से जीवामृत पानी में डालें। धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। जीवामृत पानी में मिलाकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुंचेगा। इस प्रकार जीवामृत 21 दिनों के अंतराल पर आप फसलों को दे सकते हैं। इसके अलावा खेत की जुताई के समय भी जीवामृत को मिट्टी पर भी छिड़का जा सकता है। किसान भाई इस तरल जीवामृत का फसलों पर छिड़काव भी कर सकते हैं। फलदार पेड़ों के लिए दोपहर 12 बजे के समय पेड़ों की जो छाया पड़ती है उस छाया के बाहर की कक्षा के पास 1 से 1.5 फुट पर चारों तरफ से नाली बनाकर प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत महीने में 2 बार पानी के साथ दें। जीवामृत छिड़कते समय भूमि में नमी होनी चाहिए, इसका आप खास ख्याल रखें। जीवामृत का प्रयोग किसान भाई गेहूं, मक्का, बाजरा, धान, मूंग, उड़द, कपास, सरसों, मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज, मूली, गाजर आदि फसलों के साथ अन्य सभी प्रकार के फलदार पेड़ों में भी कर सकते हैं।
1: वाह। और घन जीवामृत की अगर हम बातें करें किसान भाइयों, तो घन जीवामृत बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है हम आपको बताते चलें। 100 किलोग्राम देशी गाय का गोबर, 5 लीटर देशी गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलोग्राम दाल का बेसन, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी, ये सब सामग्री एकत्रित करके सबसे पहले 100 किलोग्राम देशी गाय का गोबर लें आप, और उसमें 2 किलोग्राम गुड़ तथा 2 किलोग्राम दाल का बेसन और 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी डालकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर लें, और इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा गोमूत्र डालकर उसे अच्छी तरह मिलाकर गूंथ लें ताकि उसका घन जीवामृत बन जाए। अब इस गीले घन जीवामृत को छांव में अच्छी तरह फैलाकर सुखा लें, और सूखने के बाद इसको लकड़ी से ठोक कर बारीक कर लें, और इसे बोरों से फिर इसे बोरों में भरकर छांव में रख दें। इस प्रकार बने घन जीवामृत को आप 6 महीने तक भंडारण भी कर सकते हैं।
0: तो घन जीवामृत का प्रयोग कैसे करना है इसकी भी जानकारी आपको जरूरी है। तो घन जीवामृत को हम किसी भी समय भूमि में डाल सकते हैं। खेत की जुताई के बाद इसका प्रयोग सबसे अच्छा होता है। अगर आप खेत की जुताई कर रहे हैं उस समय आप इसका प्रयोग करें। जब हम भूमि में इसे डालते हैं तो नमी मिलते ही घन जीवामृत में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु कोष तोड़कर पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। किसी भी फसल की बुआई के समय प्रति एकड़ 100 किलोग्राम जैविक खाद और 20 किलोग्राम घन जीवामृत का प्रयोग करें। इससे बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके प्रयोग से आप रासायनिक खादों से भी ज़्यादा उपज ले सकते हैं। बीज बोते समय बोने का जो औजार है उसमें 2 नालियों का बाउल लगाएं, 1 बाउल से बीज बोएं और दूसरे बाउल से यह जैविक खाद और घन जीवामृत का मिश्रण डालें। आपके इलाके में बीज बोने की जो भी विधि हो उससे ही इन दोनों की बुआई करें।
1: जी बिल्कुल किसान भाइयों, और ये तो बातें हुई प्रदीप जी आज हमारे किसान भाइयों के साथ जीवामृत की। और एक जी किसान भाइयों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मृदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार शैलेंद्र मोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताया जाए कि जैविक खेती क्या है।
2: जैविक खेती का तो बहुत डिमांड चल रहा है, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे कन्विंस लोग करते हैं जैविक खेती करने से बहुत सारा लाभ होता है, उसका इनकम डबल होता है और मार्केट में उसका प्राइस बढ़ता है, बीमारी नहीं लगता है। तो ऐसी गलतफहमी में किसान भाई न रहें, क्योंकि जैविक खेती अभी जो कंडीशन है, जैविक खेती करने की बात हो रही है, जैविक खेती का मतलब ही होता है जो पदार्थ, जो खाद, जीव जंतु, पेड़ पौधा, गोबर के सड़ने से जो बनता है वो जैविक खाद है। तो जैविक खाद के मतलब एक है कि उसके लिए नया नहीं कुछ है, वो पेड़ पौधा फूल पत्ती सब्जियां गोबर जो सड़ गया और सड़ने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पोषक तत्व हैं वो पौधे को मिलते हैं, तो वो जो रूप से मिला उसे कहते हैं जैविक खाद। और जो जो के जो भी फर्टिलाइजर कहते हैं उर्वरक जिसे कहते हैं, ये उर्वरक जो है ये है रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद में जितना जो DAP है, यूरिया है, ये जिंक सल्फेट है, MOP कम है, बहुत सारा बोरेक्स वगैरह जो इतना भी है, ये सारा जो है ये इनऑर्गेनिक है, ये जो है सब केमिकल रसायन है। तो इसका प्रयोग करने से लोग बहुत सारे भी कह रहे हैं कि इसका प्रयोग करने से खेत खराब होता है। निश्चित रूप से इसके यदि केवल इसका उपयोग किया जाए, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाए, तो खेत आपका आम्लीय होता है, उसकी मिट्टी आम्लीय हो जाती है। इस हाँ तो ये जो है मैं बता रहा था कि जो भी आपका रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से खेत का उपजाऊ शक्ति दिन पर दिन जो है सो कुछ के बाद खराब होने लगता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जिस पौधे का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो आवश्यकता, जैसे कि धान का आवश्यकता मान लीजिए 100 kg नाइट्रोजन है, हम बार बार न्यूट्रिएंट की चर्चा करते हैं, पोषक तत्व की चर्चा करते हैं, तो धान में मान लीजिए कि 100 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता है एक हेक्टेयर जमीन के लिए। अब 100 kg जब उसको आवश्यकता है धान को, तो 100 kg नाइट्रोजन देने के लिए आपको रासायनिक खाद ही उम्मीद चीज है जिससे आप दे सकते हैं। तो रासायनिक खाद जैसे ये है यूरिया है, DAP है, इस सब का देने से क्या होता है, जैसे कि यूरिया में आपको 46% नाइट्रोजन होता है, मान 100 kg यूरिया डालते हैं तो 46 kg नाइट्रोजन मिलेगा। उसी के जगह पर यदि कहते हैं 100 kg और ये यदि 212 kg दे दिए यूरिया, तो आपको खेत में 100 kg नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो कहते हैं जैविक खाद, खेत की बात कहते हैं, खाद की बात कहते हैं, जैविक खाद जो भी है आपका जो गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट है या जिसको केचुआ खाद कहते हैं, जोकटी खाद या जो भी है, ऐसा खाद में क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है, पोषक तत्व की मात्रा जो होती है 1% से भी कम रहता है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: मतलब कि 100 kg यदि आप जैविक खाद डालेंगे उसमें मात्र आपको 1 kg नाइट्रोजन मिल सकता है, 1.5 kg नाइट्रोजन मिल सकता है। यदि आप इसका कहते हैं महुआ खल्ली या करंज खल्ली का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम आपको 4 या 5 kg नाइट्रोजन मिल सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यदि पौधे का धान का रिक्वायरमेंट लिया जाए तो 100 kg नाइट्रोजन को देने के लिए आप सोच सकते हैं कितना जैविक खाद देना पड़ेगा, जो क्या संभव है।
1: अब
2: खुद सोचिए कि ये चीज जैविक खाद की मैंने खाद देने से आपका जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट पौधे के लिए है, या किसी धान के लिए बताया, मकई के लिए भी अलग है, राहड़ के लिए अलग है, तो वो चीज जैविक खाद देने से केवल आपका पूरा नहीं हो पाएगा।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए किसान भाइयों ये जरूर ध्यान दें कि आप जैविक खाद का जितना इस्तेमाल हो सके अवश्य अपने खेत में करें, लेकिन आज के समय में केवल जैविक खाद का इस्तेमाल करने से यदि आप खेती करना चाहेंगे तो आपको 2-3 साल तक जो भी उपज हो रहा है वो सीधे उपज घट जाएगा, बहुत कम जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसलिए जैविक खेती करके या जैविक खाद से ही आप अच्छा उपज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है बात करते हैं हमेशा INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब पौधे को न्यूट्रिएंट मिले तो वो न्यूट्रिएंट दोनों सोर्स से मिलना चाहिए, जैविक खाद के सोर्स से मिलना चाहिए और जो रासायनिक खाद है उससे मिलना चाहिए, तभी आपको अच्छी उपज प्राप्त हो सकेगी। यदि आप जैविक खाद के लिए खेती के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि हम जैविक खेती ही करेंगे, तो आप कम से कम 3 साल तक के लिए ये सोचिए कि उसमें आपको लाभ नहीं होगा। 3 साल के बाद यदि टारगेट रखते हैं कि आप खेत से 3 साल के बाद हमको लाभ मिलेगा, तो उसके लिए आप जैविक खेती के लिए आप खेत को तैयार कर सकते हैं और 3 साल के बाद उपज प्राप्त करने के लिए आप उसको सही ढंग से जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक खाद जब डालना शुरू करते हैं तो पहले तो वो जो है इनऑर्गेनिक कहते हैं, वो जो भी न्यूट्रिएंट उसको कैप्चर करता है,
1: जी हाँ जी,
2: वो जो न्यूट्रिएंट सॉइल में रहते हैं उसको वो कैप्चर करता है अपने अपने आप में और वो पौधा को नहीं दे पाता है। तो जैविक खाद देने से उपज कम जाएगा। तो अब है कि जैविक खाद खेती की डिमांड है, नो डाउट, उसमें बहुत सारा उसका जो उपज उसको खाने से बीमारियां कम होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आप पहले से उस पर जान लीजिए, जो भी जैविक खेती करते हैं उसमें कोई भी सोर्स ऑफ जो रासायनिक है या फर्टिलाइजर कहते हैं इसका इस्तेमाल करना कंप्लीट बंद है, उसमें बैंड है। जो भी रासायनिक दवाएं देते हैं कीड़ा मकोड़ा को नाश करने के लिए, मारने के लिए, जैसे कि ये फंजीसाइड है, बेबिस्टीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल जो है आपका कीटनाशक इमेडाक्लोरपिड है, मेटासिस्टोक्स है, जो भी बहुत सारा केमिकल रासायनिक दवाएं हैं, इसका जो है कंप्लीट रूप से बैंड है उस पर। और उसे में जैविक खेती जब करेंगे तो आपको कीड़ा मकोड़ा जो लगेगा उसको कंट्रोल करने के लिए केवल जो जैविक उत्पत्ति है, जैसे कि नीम की खली या नीम के तेल से जो आपका कीटनाशक बनता है या बहुत लहसुन से कीटनाशक बनता है, वो सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो जैविक खेती माना जाएगा और उसको आपको मान्यता मिलेगी कि हाँ जैविक एक खेती करके आपको अच्छा मैंने उपज मिला है। और उसके लिए आपको बहुत सारा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको सर्टिफाई करेंगे कि ये जो खेती जो हो रहा है इसमें जैविक ही जो जो जो उपादान है, जैविक जो भी खाद है, रसायन जो केम ये है दवा कीटनाशक है, सभी जैविक स्रोत से ही उत्पन्न किया गया। जो भी गोबर वगैरह भी है तो भी उसको इस्तेमाल करना है, जो कि जैविक पैदा हुए हैं उसी को जानवर खा रहा है, इस प्रकार से बहुत सारा इसमें लिमिटेशन है। तो एक ध्यान देकर रखें कि आपको यदि अच्छी उपज चाहिए तो जैविक के साथ साथ में आपको आई जो हम कहते हैं INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, मतलब जैविक खेत में खाद भी डालें और रासायनिक खाद भी डालें, तभी आपको खेत में अच्छी उपज प्राप्त हो पाएगी।
3: अच्छा, एक बात सामने आती है कि जैविक खेती अगर हम करते हैं, जैसा कि हमारे किसान भाई भी जानते हैं, तो उससे हम मृदा की स्वास्थ्य शक्ति जो है उसे बरकरार रखते हैं।
2: हाँ, एकदम सही है कि जैविक खेती करते हैं या जैविक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खेत की मिट्टी का उर्वरा शक्ति बहुत लंबे समय तक बरकरार रहता है। यही नहीं, आपको जो रासायनिक खाद के साथ में भी जो आप ये गोबर खाद डालते हैं, FYM फार्म यार्ड मैन्योर जो सड़ा हुआ गोबर खाद इस्तेमाल करते हैं या चूना का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके खेत की उर्वरा शक्ति जो है लंबे समय तक बरकरार रहता है। 30-40 साल तक जो है उसमें कुछ न कुछ उपज आपके खेत से मिलता रहेगा। वही यदि केवल रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर केवल यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस खेत में केवल यूरिया और DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस खेत में यूरिया DAP और पोटास का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है करीब 20-22 साल के बाद में या 25 साल के बाद में या 30 साल के बाद में आपका खेत को कंप्लीट बर्न करता है, माने उसमें कुछ भी उपज आप लेने लायक नहीं रहते हैं। लेकिन यदि आप जो यूरिया DAP पोटास के साथ में यदि चूना का इस्तेमाल करते हैं 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के रेट से, या आपका FYM फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल 5 टन ये जो जिस रेट है, ये जितना हो सकता है आप फार्म यार्ड मैन्योर करते हैं, तो उससे आपके खेत की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बरकरार रहती है। ये क्या जैविक खाद में जो खाद डालते हैं उसमें बहुत सारा गुण है। उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपको 16 तत्वों की मैं बात करता रहता हूँ, ये सारा न्यूट्रिएंट कुछ न कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ से उत्पन्न खाद में रहते हैं,
3: मौजूद रहते हैं।
2: इस मौजूद रहने के कारण क्या होता है, कुछ न कुछ उपज जो आपको लंबे समय तक आपको मिट्टी से मिलता रहेगा
3: जी।
2: तो ये इस तरह से जैविक खाद का इस्तेमाल करिएगा तो आपको निश्चित रूप से उपज अच्छी मिलती है। उसके बाद क्या होता है, जैविक खाद डालने से क्या होता है, उस मिट्टी में बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड माने कुछ अम्ल जो है जीवाणु पैदा करते रहते हैं
3: जी।
2: जो मिट्टी की में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको अवेलेबल करता है। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मिट्टी के अंदर बहुत सारा इंजाइम्स होता है, नाइट्रोजिनेज, फास्फेटेज, बहुत सारा इंजाइम्स होता है। उसका भोजन भी जो है ऑर्गेनिक पदार्थ से ही प्राप्त हो सकता है। वो चीज़ आपको उर्वरक से जो कहते हैं यूरिया DAP से, वो भोजन पदार्थ जो मिट्टी के अंदर जो जीवाणु हैं, ये हार्मोन्स हैं, या जैसे केचुआ कहते हैं, बहुत सारा चीज़ है उसके अंदर में पाया जाता है। उसका भोजन जो है आपको जैविक उत्पन्न जो उत्पत्ति होती है उसी से उनको भोजन मिल पाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बरकरार रहता है।
3: कुल मिलाकर हम इस बिंदु पे आते हैं कि हमें जैविक खेती के साथ साथ कुछ रासायनिक उर्वरकों का भी व्यवहार करना चाहिए।
2: निश्चित रूप से यदि आपको अच्छी उपज लेनी है तो आपको, जब मैंने पहले बताया कि जैसे कि आपका धान का बताया, उसी प्रकार से यदि राहड़ में 30 kg नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है प्रति हेक्टेयर, तो आपको 30 kg नाइट्रोजन देने के लिए आप यदि नाइट्रोजन के यूरिया के माध्यम से देते हैं तो कम यूरिया देने में काम चल जाएगा। लेकिन यदि चाहेंगे कि आप जैविक उत्पत्ति जो हुए हैं, जो भी जो केचुआ खाद है या नीम खली है, क्रंज खली है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कई टन देना पड़ सकता है, मैंने कई क्विंटल देना पड़ेगा।
3: अच्छा अच्छा,
2: तो इसलिए दोनों को इस्तेमाल करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और क्या होता है, मिट्टी के अंदर यदि जैविक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी का जल धारण क्षमता वो बरकरार रहता है। मिट्टी में जैविक जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बरकरार रहते हैं। मिट्टी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करने के लिए, उपलब्ध करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जैविक पदार्थों से। तो इसे जैविक खाद का इस्तेमाल साथ साथ में जरूर करें। इससे क्या होगा, जल मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लंबे समय तक आप उस मिट्टी से अच्छी उपज किसान प्राप्त कर सकते हैं।
3: आप थे पलामू जिले के जाने माने कृषि वैज्ञानिक, मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार शैलेंद्र महंत। बहुत ही अच्छी जानकारियां जैविक खेती से संबंधित साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: धन्यवाद किसान भाइयों भी।
3: किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं एक सफल किसान जो पलामू जिला के पाटन प्रखंड के हिसरा बरवाडी गांव से आते हैं, और ये किसान भाई ने गर्मा सब्जियों की खेती कर रखी है, गर्मा अन्य जो फसलें हैं अनाज फसलें उसकी भी खेती कर रखी है। इसके साथ ही साथ ये बागवानी पर इनका विशेष बल रहता है। और आप हैं अजय कुमार मेहता, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: अभी आप गर्मा में किन किन सब्जियों की खेती कर रहे हैं?
4: नमस्कार, मैं अजय कुमार मेहता, ग्राम हिसरा बरवाडी पाटन से हैं। अभी गर्मा फसल में हम लोग का है कद्दू है, करेली, झींगी, नेनुआ, खीरा, मिर्चा, सभी तरह का गर्मा फसल अभी लगा हुआ है।
3: अच्छा।
4: प्याज अभी और बरसाती फसल का भी तैयारी हो रहा है।
3: बरसाती की तैयारी अभी से शुरू कर दी?
4: जी जी, अब तैयारी हो गई।
3: उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं?
4: जिससे खेत को जुताई हो गया, खेत एकदम सूख के तैयार है। उसके बाद हम लोग मेड़ बना देंगे, मेड़ में पानी डालेंगे, इसके बाद बीज को रोपाई करेंगे।
3: मेरा खेत किस प्रकार होना चाहिए बरसात की खेती के लिए?
4: खेत हमारे ढालू नुमा होना चाहिए, जिसमें पानी की जल जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात में जब अधिक बारिश होने के बाद जल जमाव हो जाता है, जिसके पौधा का नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ढालू जमीन की जरूरत है गर्मा बरसाती साग सब्जी लगाने के लिए।
3: और बरसाती साग सब्जियों में किसके किसके विचार आपने किए हैं सब्जियों की?
4: जिससे बरसाती में भी हो गया कद्दू हो गया, करेली हो गया, नेनुआ हो गया, खीरा हो गया, ये सब अभी बरसाती लगेंगे। जो अब वो हम लोग ई पर लगाते हैं, किसी भी पौधा को काट करके उसको झाल बना देते हैं, उसी पर उचड़ करके ऊपर फलेगा। गर्मा फसल में जो भी हम लोग उत्पादन होता है तो जमीन में भी फला रहता है, इसलिए कि वो ऊपर में जाएगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसके कारण वो फल में नुकसान होने लगता है। लेकिन बरसाती फसल में वो नहीं है, सब जो भी होगा उसको हम लोग बांस का, चाहे बांस तार में बांध कर उस पर हम लोग लतर को चढ़ा करके बरसाती फल को हम लोग लेते हैं।
3: अच्छा। और अब हम बागवानी की ओर लौटते हैं। बागवानी में अभी आपने क्या क्या लगा रखा है?
4: जैसे अभी आम हम लोग लगाए हैं, अमरूद है, और अभी फल भी आ चुका है, आम में बहुत अच्छा फल है।
3: और आम की देखरेख कैसे कर रहे हैं अभी?
4: आम जैसे हम लोग का मंजर आया, उसके बाद हम लोग छिड़काव किए कीटनाशक का, और इसके बाद में हम लोग उसका दो बार किए, इसके बाद फल आना स्टार्ट हो गया तो उसको हम लोग छोड़ दिए, ज़्यादा दवा का यूज हम लोग नहीं किए।
3: कौन कौन से किस्म के आम है?
4: वो हम लोग इधर तो लोकल में हम लोग लंगड़ा और दशहरी के नाम से ही जाने जाते हैं, और मैंने ज़्यादा लंगड़ा का फल है।
3: और उसी को आपने लगाया है?
4: जी जी।
3: और खासकर खाद उर्वरक का व्यवहार क्या कर रहे हैं आप?
4: खाद में हम लोग गोबर खाद का यूज कर रहे हैं, पेड़ के नज़दीक भी, चाहे हम लोग साग सब्जी भी लगाते हैं तो बीज जहाँ लगाते हैं वहाँ हम लोग खाद पहले डाल देते हैं, गोबर खाद मिला करके, मिट्टी और गोबर खाद मिला करके इसके बाद बीज को डालेंगे वहाँ, और इससे पौधा भी जर्मिनेशन होने में भी बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है, क्योंकि मिट्टी वहाँ एकदम भुरभुरा हो जाता है, हार्ड मिट्टी नहीं रहता है, और जर्मिनेशन होने में पौधा का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहिए, चाहे केचुआ खाद कहिए, चाहे घरेलू खाद, उसी का यूज कर रहे हैं।
3: और आम के अतिरिक्त और कौन से पौधे हैं?
4: आम के अतिरिक्त तो ऐसे फिर तो काम के पौधे हैं, ये हैं नींबू है, फिर अनार का भी कुछ पौधे हैं, और आम है ही।

0: देते हैं और 8 दिन 10 दिन पर पानी, बरसात में तो खैर पानी नहीं लेता है, लेकिन गर्मी में 8 से 10 दिन के अंदर पानी 2 बार देना ही पड़ता है।
1: और अभी गर्मी के दिन में,
0: गर्मी के दिन में 8 दिन में 2 बार पानी देते हैं उसमें। गर्मी के दिन में जैसे हम लोग जैसे नींबू का पौधा लगाए, अमरूद का लगाए, केला है, आम का है, उसमें हम लोग पानी मेढ़ बना देते हैं और मेढ़ से पानी उसके अंदर हम लोग डालते रहते हैं। 8 दिन में 2 बार हम लोग पानी का देना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पलामू में पड़ रहा है जिसके चलते फसल का नुकसान होने लगता है।
1: केले के हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
0: केला का उत्पादन अधिक से अधिक करना है तो 10 फीट के अंदर दूरी 10-10 फीट पर लगाएं, उसमें कोड़ाई उड़ाई करके बर्मी कंपोस्ट खाद जहाँ से अभी है कहीं से भी उपलब्ध है अपने घर में है हम लोग उपलब्ध करके बीच में डाल करके उसको हम लोग करें और अच्छा उत्पादन होता है। सबसे अधिक केला पलामू में हम लोग का लोकल केला का मांग होता है सब्जी के लिए, जो कि बहुत अच्छा तरह से पैसा

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
3: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Hey guys, आज तो पार्टी चाहिए,
8: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
7: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
7: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किया शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जाँच एनआईए से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में कल से राज्य स्तरीय दो दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री शिल्पी नेहातिर की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास। और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आधुनिक ढांचागत संरचना के विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर है और राज्यों के विकास पर बल दिया जा रहा है।
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने बास्किता पथ और बेनिदास भुस्का तक बनने वाली सड़क की भी आधारशिला रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़, संगठित वसूली नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय अपराध संचालन तंत्र और संभावित विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हाल ही में धनबाद में एक कुख्यात अपराधी द्वारा विदेश से सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग दिनों में जारी वीडियो ने पूरे राज्य की प्रशासनिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री मरांडी ने इस मामले को लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को तत्काल प्रभाव के साथ पद से हटाने की मांग भी की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना गिरिडीह जिले के गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के तोलडी के रहने वाले आमिर हसन को भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
2: एक महीने से मेरा पेट में दर्द था, वो पेंडिस हुआ था, जो पैसे के ना कारण से हमने अपना इलाज नहीं कराया, लेकिन आयुष्मान भारत के द्वारा सरकार ने ये जो दिया तो इसी के लिए हमने अपना ऑपरेशन करवाया और इसीलिए हम भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
0: राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से दो दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहातिर की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। हजारीबाग जिले में आज हुई दो अलग अलग दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना गोरहर थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें सब्जी लदे एक अनियंत्रित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गोरहर गांव के समीप हुई, जिसमें चार वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@yayanews

0: अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया।
1: शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से आगे चलकर अगले 5 वर्षों के लिए असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित भाव से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेगी और हिमंत बिस्व शर्मा जी उसको धरती पर असम की जनता के लिए पूरी ताकत से लगाएंगे।
0: श्री शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। गढ़वा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी क्रम में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। खूंटी पुलिस ने जिले के रनिया थाना क्षेत्र में आज छापेमारी कर लगभग 8 लाख रुपए मूल्य का डोरा जब्त किया है। तोरपा SDPO क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक मालवाहक वाहन को जब्त किया है और फरार तस्करों की तलाश जारी है।
2: ये रानिया और कमडरा बॉर्डर में करीब 3-4 बजे एक ट्रक निकल रही थी तो थाना प्रभारी और अन्य की सूचना से एक ट्रक पकड़ाया है। उसमें डोडा और कुछ भूसी है जो गाय के लिए दिया जाता है, उसे ले जा रहा था। अभी एग्जैक्ट तो नहीं जान रहे हैं, करीब 50 तो होगा।
0: रांची स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर आए कलाकारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की आयोजक मोनिका डी ने बताया कि इस डांस फेस्टिवल में देश के 18 प्रदेशों के 300 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये नृत्य कार्यशाला कलाकारों को एक बेहतर मंच देने की कोशिश है।
3: मैं IADF का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कलाकारों को मंच प्रदान कर सकूं। कलाकारों के लिए मंच की बहुत आवश्यकता होती है। ऑल ओवर द इंडिया यहाँ कलाकार है, अनफॉर्चुनेटली बाहर से भी कलाकार थे। यहाँ चेन्नई, बेंगलुरु, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, झारखंड, सभी जगह से हमारे यहाँ कलाकार है।
0: झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूर्वी सिंहभूम में आयोजित इस चैंपियनशिप में रांची की टीम ने मेजबान टीम को 4-5 अंकों से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय महिला की रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीन के शंघाई में आयोजित दूसरे चरण में आज झारखंड की दीपिका कुमारी और अंकिता भकत तथा कुमकुम मोहद की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के और वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किला शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके में कल से राज्य स्तरीय दो दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास। और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इनसे लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
4: पर दीप,
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
6: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
8: ओह लवली, वेल डन।
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
8: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
6: RBI कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: भारत सरकार द्वारा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान दिए जाने का असर धरातल पर दिखने लगा है। गिरिडीह के गरीब प्रधानमंत्री आवास पाकर बेहद खुश हैं और भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
2: मेरा नाम रमेश कुमार दास, वार्ड नंबर 3 अंदूडी जरडी का निवासी हूँ। मैं पहले मिट्टी का मकान था, लेकिन जब मोदी जी का आवास मुझे मिला तो मैं इस आवास को बना पाया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस मकान में बहुत अच्छा से मैं रहता हूँ। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से प्रणाम करता हूँ।
1: डीसी राम निवास यादव ने जिला वासियों से स्व जनगणना में भाग लेने की अपील की है।
3: आम नागरिकों के लिए स्वगणना की सुविधा एक विशेष पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1 मई से 15 मई 2026 तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु एक पोर्टल se.census.gov.in बनाया गया है, जो 1 मई से चालू होगा। आमजनों से आग्रह है कि वे सेल्फ इनोग्रेशन के प्रति जागरूक रहें, अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें तथा इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।
1: गिरिडीह शहरी क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम जन जागरण अभियान चलाएगा। उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय लिया है।
4: अवेयरनेस के लिए जो जो कदम उठाना है हम लोग को, जैसे हमारा कांक्षा कंपनी है, हमारा निगम के कर्मी है, सभी को निर्देश देने का है कि हम लोग उसको निर्देश दें ताकि, और पॉलीथीन का सबसे बड़ी समस्या है यहाँ गिरिडीह में पॉलीथीन का, उसको लेके भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो दुकानदार हैं उस पर हम लोग पहले अपील करेंगे कि वो ना इसका उपयोग ना करें, और उसके बाद भी यदि कोई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
1: भारत सरकार किसानों के उत्पाद बेचने के लिए उन्हें उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। नाबार्ड ने जमुआ प्रखंड में हाट सेड का निर्माण किया है, जिससे स्थानीय लोग और किसान काफी खुश हैं।
5: हमारा नाम छत्तरधारी मातृ सेवा निधि शिक्षक, जो बरसात में हम लोग सब भींग जाते थे, साग सब्जी हम लोग का भींग का बर्बाद हो जाता था, किसी तरह से दौड़ के मंदिर जाते थे, वहाँ भी मंदिर घुसने में थोड़ा दिक्कत होता था, सूख प्याज लेके जाना मुश्किल होता था। अभी सरकार के द्वारा जो बन गया, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को रहने का बैठने का सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है।
1: पिछले 15 दिनों से मौसम के रुख में आए बदलाव से मई महीने में ठंड का लोगों को एहसास हो रहा है। प्रत्येक दिन हो रहे बारिश से तापमान लुढ़क गया है और ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से मुक्ति मिल गई है। इधर बारिश और आंधी से गिरिडीह में जान माल का भी नुकसान हुआ है। इस बार आम फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
0: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में गज़ल। कार्यक्रम था स्वरांजलि। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम महुआ। कलाकार हैं जनक सिंह महतो और साथी।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। चित्रपट से कार्यक्रम की पहली पेशकश लीजिए, सुनिए। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट सी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग

0: पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुँच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका

0: आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग

0: सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभासपाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभासपाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर

बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by

0: पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के आवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आइन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें इनकी आवाजों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वजराए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीने वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने जन भवन लखनऊ में आज नए वजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वजरा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वजरा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर ममलकत बनाया गया है। कानून साज काउंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर ममलकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर ममलकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, निज इलाके के गांवों को पानी की मौसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओं की गजाइत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इस्तेमा से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई जरूरतों और नौमौलूद बच्चों की जरूरतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकाती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खरात से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खरात के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई थी। IPS अफसर तेजस्वी सतपुते की क्यादत वाली SIT ने नासिक में वाकई महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी में आज से तहकीकात का आगाज किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सियाहत हिफ्जान सेहत बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। यह दस्तखत वजीर खारजा एस जयशंकर के करेबियाई मुल्कों के दो रोजा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम अमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तस्दीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद विशेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। यह बातचीत दो तरफा तआवुन को तौसी देने से मुतल्लिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी अहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी अहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दीगर 4 दरखास्तों पर अपने अहकामात महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है, जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जग दिला मन की मौज दोनों को निभाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: सिया मिलन को जाना,

1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

0: पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।
1: दो नैना मतवाले

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिक आई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

दिल्ली डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए सुनते हैं चुनिंदा फिल्मी नगमें।

0: अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी।
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, आई लव यू।

दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन

लीजिए सुनिए एक और गीत फिल्म राम लखन से और आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए ये गीत और कार्यक्रम रजनीगंधा से हमें दें इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास

सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।